सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen. और यूं ही बातें करते करते एक घंटा निकल गया, पहुंच चुके हैं 8 बजे के उस पार। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा यहां पर आपके साथ। एंड यस, इट्स मस्ती का मंत्रा। वेल, ये जो खबर है बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के लिए है जो कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं। एंड व्हेन वी फ्लाई होम तो हम बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं एंड देन वहां से हम अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट अपने अपने होम टाउन की तरफ लेते हैं। सो जैसे कि लाइक कानपुर में एक ही इंडिको ही जो है जाती है फ्लाइट। सो वेल, हियर्स द अपडेट भाई। 6th ऑफ अक्टूबर व्हिच इज टुडे ऑनवर्ड्स, इंडिको जो है दे हैव इंक्रीज्ड अपना फ्यूल चार्जेस ऑन न्यू डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बुकिंग्स। नाउ एयरलाइन सेज एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइसेस हैव जंप्ड मोर देन 14% मंथ ऑन मंथ, पुटिंग फ्यूल कॉस्ट अमंग देयर हाईएस्ट लेवल्स इन अ डेकेड। नाउ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में रिवाइज्ड फ्यूल चार्जेस जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। सो या इनकी अपनी उन्होंने पूरी की पूरी मैथ लगा रखी है वहां पर अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर्स एंड एवरीथिंग। नाउ कंपेयर टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ रफली 100 से 350 रुपए तक का डोमेस्टिक सेक्टर में एक इंक्रीज देखा गया है। इंटरनेशनल रूट पर जो है चार्जेस थोड़े से और हायर है कंपेरेटिवली, ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर मतलब वहां पे समटाइम्स द हेडलाइन जस्ट टेक्स इट अवे, राइट, 10,000 रुपए महंगा। या सो बेसिकली उतना भी पैनिक करने का जरूरत नहीं है। 10,000 इज द हाईएस्ट फ्यूल चार्ज फॉर सर्टेन इंटरनेशनल रूट्स, डोमेस्टिक कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर वो अमाउंट अप्लाई नहीं होता है। सो फॉर पीपल लाइक मी प्रैक्टिकल टेक अवे इज दिस दैट या इंडिया का ट्रिप प्लान करते वक्त सिर्फ सिंगापुर टू दिल्ली का फेयर हमें नहीं देखना पड़ेगा, दिल्ली से घर तक की कनेक्टिंग फ्लाइट को भी टोटल बजट में या उसमें फर्क पड़ने ही वाला है। एंड दीज रिवाइज चार्जेस जो है अप्लाई टू न्यू बुकिंग्स विच आर गोइंग टू बी मेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो वेल, घर जाना प्राइसलेस है लेकिन टिकट डेफिनेटली प्राइस लेस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्या ही बताए कौन सी चीज प्राइस लेस है आजकल, लाइक just taking like price and less, कुछ भी नहीं है, everything is so very expensive. इससे पहले कि मैं और रो यहाँ पे बढ़ते आगे, let's take a musical break on Radio Masti 24/7. Good morning.

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।

वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 अनुराग के साथ यहाँ पर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड चल रहा है क्या मस्ती का मंजरा डियर मस्ती दिल से तो शाम के टाइम पे आएगा लेकिन फिलहाल सुबह के टाइम पे सुबह वाला काम कर लेते हैं. इट्स 8:22 बाय द स्टूडियो क्लॉक. अगर ऑफकोर्स हेस की बात ना करें सिंगापुर में तो ऐसा कैसे ही हो सकता है. इट इज वेरी मच अराउंड राइट दिस मॉर्निंग एयर क्वालिटी अगेन एज पर द रिपोर्ट्स जो है वापस से अनहेल्दी रेंज में ऑलमोस्ट अक्रॉस मोस्ट ऑफ सिंगापुर में पाया गया है. एज ऑफ 6 AM दिस मॉर्निंग द 24 RPSI वाज 130 इन सेंट्रल सिंगापुर, 117 इन द वेस्ट, 112 इन द ईस्ट एंड 107 इन द नॉर्थ. साउथ वाज कंपैरेटिवली बेटर एट 95 इन मॉडरेट रेंज. NEA जो है सी इज मॉडरेट टू डेंस स्मोक के प्लूम्स फ्रॉम सदर्न सुमात्रा दे हैव बीन ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स सिंगापुर विद स्मोक हेज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन पार्ट्स ऑफ कालीमंथन. नाउ ड्राई कंडीशंस जो है आर एक्सपेक्टेड वहां पर सो डिपेंडिंग ऑन द विंड्स हेज कुड कंटिन्यू मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन सिंगापुर. एक और जो है यूजफुल डिस्टिंक्शन बिकॉज हम PSI सुनते ही बस नंबर देखकर

like heart या lung conditions, they need to be very very much more careful. By Tuesday का mantra, हमको control देखो हम नहीं कर सकते, but अपना exposure हम control कर सकते हैं and we can take care precautions absolutely very well. So take care, keep checking the readings and एनर्जी सेव करके रखिए फिलहाल. तो इस वक्त मैं यही कहूंगी क्योंकि थोड़ी ही देर में हम कॉन्टेस्ट खेलेंगे. एनर्जी वाला काम जो है हम ऑन एयर यहाँ पे खुलेआम कर सकते हैं. इफ यू वांट पासेस टू डांडिया, वो भी सिंगापुर गुजराती सोसाइटी वाला सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि, या जस्ट स्टे ट्यून्ड क्योंकि थोड़ी ही देर में उसी के बारे में बात होगी और वही कॉन्टेस्ट खेला जाएगा. सो डोंट गो एनीवेयर.

0: राजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: Get you on a dinner. वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. रेडियो मस्ती 24/7 टोटली वॉज एंजॉइंग द गाना प्लेइंग ऑन एयर ऑन रेडियो मस्ती 24/7. 8:36 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. और आइए डांस की ही बात करनी है, क्योंकि एनर्जी तैयार कर रहे हैं हम आने वाले उन दिनों के लिए जब हमें इस एनर्जी का काफी प्रयोग करना पड़ेगा. एंड इट इज अ गुड थिंग. ओके भाई, आई एम गोइंग टू पुट यू राइट नाउ ऑन ऑल द गरबा एंड द डांडिया मोड. देखो, फील अभी से आएगी तभी तो हम बिल्कुल एब्सोल्युटली चार्ज्ड एंड तैयार होंगे. पर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी की सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि भाई, तीन रातें मतलब तीन शामें इनफैक्ट. ओके, 16, 17 and 18, इट्स सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशन एंड टुगेदरनेस एंड द अनबीटेबल गरबा वाइब. देखिए जो है टिकटें निकलती हुई जा रही है अब, इससे पहले कि सही ही निकल जाए और फिर आप सोचे कि अरे ये क्या हो गया, तो मतलब समझ रहे हो ना आप. तो वेल, बात कुछ ऐसी है कि एक तो इनका जो ये नया वेन्यू है जहां पर ये होने वाला है इस बार, आई थिंक दैट इज माइंड ब्लोइंग. इट्स सो अमेजिंग. इट्स लगुना बॉल रूम एट दूसरे थाली लगुना, 11 लगुना गोल्फ ग्रीन में ये जो है. एंड जिनको पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता है भाई, इस बार का जो ये वेन्यू है इट्स वेरी वेरी बिग एंड रिच एंड क्लासी एंड सो वेरी अमेजिंग. इतनी सारी बातें करने के बाद देखिए, एक तो रास्ता ये है दैट यू लॉग ऑन टू the website I am telling you to, which is sgs.org.sg/navratri2026. तो वो एक तरीका है. और एक और तरीका है जो है, यहाँ पे मेरे सवाल का, मेरे सवालों का जवाब दो ना. So, well, मैं पूछने वाली हूँ एक सवाल, एंड क्या पता कि यू गेट दैट चांस टू विन ये जो है सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का जो गरबा है इसकी टिकट. सो वेल, सवाल बहुत मुश्किल है, आपको डेफिनेटली गूगल करना पड़ेगा. ना ना ना ना, ये मत करना. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस. सो सवाल कुछ ऐसा है दैट गरबा इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल दैट ऑनर्स माँ अम्बा. गरबा जो ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है वो कौन से फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है दैट ऑनर्स गॉडेस अम्बा. आपके ऑप्शंस है, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस आल्सो, ए दिवाली, बी दुर्गा पूजा, या फिर सी नवरात्रि. ए दिवाली, बी दुर्गा पूजा या सी नवरात्रि, कब गरबा जो है ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है. 9158963, दैट्स द नंबर. ना ना ना ना, ढूंढना नहीं है, फटाफट से देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट कौन आता है यहाँ पर और देता है मुझे ये जवाब एंड ले जाता है वो मौका जीतने का ये टिकट्स मुझसे, है ना. कमाल कमाल, बेमिसाल फील को और बनाए रखने के लिए आने वाला है ये वाला गाना.
2: माड़ी मेलडी, माड़ी जगत जननी,
3: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा
2: हेरमते आवे
3: माड़ी. इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 8:50 रेडियो मस्ती 24/7 पर ऑन ट्रॉप के साथ यहाँ जो है बिल्कुल ट्रैफिक अपडेट देने पहुंच चुकी है। वेकल ब्रेकडाउन उस घंटे आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी आफ्टर BKE। हैवी ट्रैफिक की खबर है ऑन सेंट्रल बुलेवार्ड टुवर्ड्स निकोल हाईवे बिफोर राफल्स की। एंड वेकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन ACP टुवर्ड्स आप अगर जा रहे हैं सिटी आफ्टर बिडोक साउथ एवेन्यू 1। वेल ये रहा ट्रैफिक का अपडेट। यहाँ पे निकिता ट्यून इन कर चुकी है, गुड मॉर्निंग, और कह रही है यू आर अ गुजराती, देन फ्लाइट लैंड होने पे बुर्ज खलीफा पे कहीं भी कभी भी सनेड़ो है ना। आई हैव वॉच्ड दिस सनेड़ो इन वन ऑफ आवर शाइन पार्टीज जो न्यू ईयर वाली हमने की थी। ओ माई गॉड, आई थिंक वी स्टिल हैव दैट वीडियो समवेयर इन आवर आर्काइव्स एंड इट वॉज crazy insane. I love it completely. So well, good the morning hai hi hai yahan par. Loving zindagi every bit. Tuesday wali subah kya kare, ab hai to hai na. Good morning.

0: जिंदगी का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: क्या हो रहा है, क्या ही हो रहा है आजकल इंडस्ट्री में। मतलब क्या स्क्रिप्टेड है, क्या नॉन स्क्रिप्टेड है आजकल तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कहना क्या चाहते हो वो वाला जो मीम चलता है ना, आई थिंक टोटली एप्लीकेबल है। कौन है, क्या है, कब है, किधर है भाई। क्या है ना कि रेडियो मस्ती 24/7 पर गुड मॉर्निंग, यस दिस इज द ट्यूजडे मॉर्निंग शो। मैं आपकी अंतरा, चल रहा है मस्ती का मंत्रा। ये घंटा जो है ना होने वाला है खत्म, तो मैंने कहा कि टीजर देकर फिर रैप अप करते है ना, फिर अगले घंटे में आके बताएंगे कि कैसी भाई। आई थिंक एक ही ये जो इंडस्ट्री है जिसने हमारा दिल लगाया हुआ है काफी, कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहता है, हमारा जो है जी लगा रहता है कि ओ अच्छा ठीक है वो, अब इस बार इन्होंने ऐसा कर दिया। स्क्रिप्टेड नॉन स्क्रिप्टेड की यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई और हमें अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके लिए और जिनके अराउंड ये सारी चीजें हुई है फिलहाल, जिसके बारे में मैं अगले घंटे में आके बताऊंगी, वो जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है मुझे तो वो भी स्क्रिप्टेड ही लगा, क्योंकि इतनी सारी हिंदी वो इतने फ्लो में मेरे शक का काटा जो है ना वो कहीं पर भी जा सकता है व्हेन इट कम्स अबाउट दीज थिंग्स। वेल लेट मी कम बैक एंड टेल यू एंड गिव यू ऑल द गॉसिप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 दिस ट्यूसडे मॉर्निंग। कम मॉर्निंग करते हैं रैप अप इस घंटे को बट विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव इट, अरिजीत सिंह की आवाज। कमिंग अप नेक्स्ट

सप्ताह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live pe. कौन है वो बताओ मुझे ठीक है, बता ही देती हूँ। 9:00 हो चुके हैं, 6 मिनट यहाँ पर। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ, मस्ती का मंत्रा चल रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग एंड यस, बातें करते करते हम लोग तीसरे घंटे में भी यहाँ पर एंट्री मार चुके हैं। क्या होता है कि कभी कभी ना एक सेंटेंस पूरी कॉन्वर्सेशन से निकल पर सोशल मीडिया पर आ जाता है एंड सडनली वो सेंटेंस कॉन्वर्सेशन से बड़ा हो जाता है। एंड Something similar has recently happened with हमारे संजय दत्त नायक नहीं, ding ding ding। I think that's his like background score। जब भी संजय बाबा आते हैं सामने तो पीछे ये background चल रहा होता है। But also before I tell you what happened, it's also कितना ज्यादा हम बात कर चुके हैं कि जब celebrities कभी भी कोई भी चीज बोलते हैं उसको बहुत ही ज्यादा जो है बिल्कुल seriously लिया जाता है, and especially in this social media का era। संजय दत्त रिसेंटली अपियर्ड एक एक शो पर, शेखर सुमन का जो शो था उस पे, एंड आई थिंक इट वाज इट गांधी जयंती एपिसोड मे बी। सो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ही स्पोक अबाउट इंडिया एंड उन्होंने कहा दैट इंडियंस आर लार्ज हार्टेड एंड बहुत हॉस्पिटेबल है एंड दैट ही कुडंट फील द सेम पीस इन द कंट्री एनी मोर। नाउ उसके बाद जो है एक सटायरिकल सेगमेंट जो है वहां पे वेर ही स्लिप्ड इनटू फुल मुन्ना भाई के मोड में एंड इमेजिन्ड बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 मिनट्स। वहां पे गांधी जी के 3 फेमस मंकीज की बात करते हुए संजय दत्त बेसिकली सेड दैट बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन 4th मंकी भी होना चाहिए, बिकॉज अगर कुछ गलत देखा तो उसे ठीक कौन करेगा। नाउ That along with his comments about peace started quite a ruckus online. Sanjay Dutt jo hai itna zyada ho gaya, itna mamla bada ho gaya ki Sanjay Dutt ko khud hi basically video dalna pada ki clarification dene ke liye. First ek written statement unhone nikala, then in the video with folded hands he said that ye jo segment tha that was completely scripted, ek light hearted satire tha, and that those lines should not be taken as his personal political views or feelings, and he said that the intended spirit was closer to Munna Bhai idea of Gandhigiri, love and warmth and togetherness and goodwill. Ab jo show ke host the hamare Shekhar Suman sahab, wo bhi unhone bhi defend kiya saying the show itself is like it's satire based and that Sanju Abak remark was not intended. Acha, the thing is that जब संजू बाबा का ये वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है वेर ही इज गिविंग क्लैरिफिकेशन एंड एवरीथिंग, ही इज स्पीकिंग लाइक रियली बहुत सारा गुड हिंदी, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट ये भी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा ही लग रहा था क्योंकि वो जहां से पढ़ रहे थे दैट इज ऑल्सो स्क्रिप्ट। आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट, ही कुड हैव जस्ट डिड इट हिज स्टाइल जनरली, बट देन वेल कूडोज टू द एफर्ट्स। बट सर विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत ही सही कहा गया है और इस बात को मद्देनजर रखना ही चाहिए, है ना। नहीं, टेकिंग नोट्स ओवर देयर, आई एम श्योर संजू बाबा हैज लर्नड, आई होप लर्नड द लेसन फ्रॉम दिस। वेल, इसी बात के साथ जो है ये बढ़िया, हम भी बढ़िया, तो गाना भी हो जाए बढ़िया बढ़िया। आई वॉज लाइक कि संजू बाबा के साथ ये गाना तो बहुत ही सही जाएगा, सही जाएगा। गुड मॉर्निंग प्राण प्रिय।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore. 2 days. Endless style. One destination.
2: It's a Musti partner event.
3: I have enough clothes for this festive season. No one said that ever. No one. 9:00 हो चुके हैं. 20 मिनट रेडियो मस्ती 24/7 मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर और चल रहा है मस्ती का मंत्र. भाई फेस्टिव सीजन आ रहा हो और वो जो मोमेंट होता है ना कि जब आपके पास इनवाइट्स ऑलरेडी आने शुरू हो जाते हैं कि यहाँ जाना है, दिस पार्टी दैट पार्टी एंड यहाँ पे दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑफकोर्स हम अपना वार्डरोब खोलते हैं एंड मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है. This is like every साल and every time का जो है हमारा रोना चलता रहता है. But then, well, अगर festive shopping mood officially on हो चुका है and you have been thinking and planning, let me tell you, you cannot miss this one. 13th and 14th of October को High Life Exhibition that's coming to Singapore. You, those who know, they know. Those who have been, they know very, very well. Because I have been waiting for this one personally. They are getting this latest from the Indian fashion to the jewelry to the lifestyle shopping right here under one roof. So basically shopping ka mood without booking that extra flight and that is so very amazing. So High Life jo hai the brand, it has showcased thousands of designers across more than 30 cities bringing together the ethnic and the contemporary fashion and jewelry and the kind of designs you find over here with the designers and you know kafi sari aap wahan pe directly baat kar sakte ho ki aisa waisa I prefer this I do that. It helps a lot. So hamare Singapore edition ke liye we are talking here 75 plus top Indian designers, the festive se lekar bridal to the contemporary ethnic styles and the jewelry and the accessories where I am more interested. I like different kind of pieces. So well, अब आपको फुल फेस्टिव ग्लैम चाहिए या फिर समथिंग एलिगेंट बट नॉट टू मच या फिर बहुत ही कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, दिस इज वन प्लेस यू मे वांट टू एक्सप्लोर. हॉलिडे इन ऑर्चर्ड जो है सिटी सेंटर वहां पर हो रहा है 13th एंड 14th ऑफ अक्टूबर सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक. सो सेव द डेट्स, अपने शॉपिंग गैंग को साथ में ले आइए बिकॉज फेस्टिव सीजन का एक रूल तो पक्का है, आउटफिट रिपीट करना एब्सोल्यूटली अलाउड है पर नया आउटफिट देखना भी उतना ही जरूरी है. यू नो उस वार्डरोब का क्या होगा जिसके सामने हम खड़े होकर कहते हैं वी नीड टू कीप डूइंग समथिंग राइट. गुड मॉर्निंग,
4: वी आर द साउंड्स ऑफ द स्ट्रीट्स.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: फिलहाल बाबरामन कह रहा है कि सिंगापुर की सड़कों पर चला जाए और पता किया जाए कि क्या कहता है इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स चांकी आफ्टर टोकमा रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 3। रोड वर्क्स की खबर ऑन मिडिल रोड टुवर्ड्स निकोल हाईवे आफ्टर बीच रोड, अवॉइड करें अगेन लेन नंबर 3। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन CTE टुवर्ड्स SLE बिटवीन MK एवेन्यू 3 एंड ब्रैडल रोड। वेल इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट तो ये रहा, लेकिन बाकी अगली खबर का अपडेट लेट मी कम back after this with their works ka mashup।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stania, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
4: Time to raise the bar.
5: रम्मा
4: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
4: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
2: राजपाल यादव का नाम सुनते ही यूजुअली याद आता है कॉमेडी एंड द इम्पेकेबल टाइमिंग एंड वो एक्सप्रेशंस। मंत्री जी कैसा लग रहा हूं मैं, आई कैन नॉट फॉरगेट। भूल भुलैया रेडियो मस्ती 24/7 अंतराम के साथ और यहां पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा। बट वेल अब फिलहाल कुछ टाइम से हमारे राजपाल यादव द एक्टर जो हेडलाइंस में है, इट्स फॉर कंप्लीटली समथिंग वेरी वेरी सीरियस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हैज शार्पली पुल्ड अप राजपाल यादव का जो है इन हिज वेरी लॉन्ग रनिंग ये जो चेक बाउंस का केस है आफ्टर ही फेल्ड टू मीट अ पेमेंट डेडलाइन गिवन बाय द कोर्ट। बैकग्राउंड ये है बिकॉज 15 साल से भी पुराना ये केस है। इट गोज बैक टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अराउंड 5 crore टेकन इन कनेक्शन विद राजपाल यादव का 2012 का डायरेक्टोरियल फिल्म अता पता लापता। नाउ चेक्स इशूड टुवर्ड्स रीपेमेंट दे वर डिसऑनर्ड लीडिंग इवेंचुअली टू 7 जो चेक बाउंस हुए और ये जो केसेस बने। नाउ विद इंटरेस्ट एंड अदर अमाउंट्स द डिस्प्यूट जो है हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स। अब इसी साल में शुरुआत में राजपाल यादव हैड ऑलरेडी स्पेंट लाइक 4.5 months इन जेल अकॉर्डिंग टू व्हाट हिज काउंसिल लेटर टोल्ड सुप्रीम कोर्ट। देन इन जुलाई जो है दिल्ली हाई कोर्ट अपहेल्ड हिज कन्विक्शन एंड इम्पोज्ड 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट वाइल डायरेक्टिंग ऑल द पेमेंट्स इन द 7 cases। नाउ द मैटर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे ही वॉज गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी एंड वॉज डायरेक्टेड टू डिपॉजिट 2 crore 2 हफ्ते के अंदर एज अ पार्ट ऑफ प्रपोजल टू क्लियर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। बट जब वापस से ये मैटर उनके सामने आया पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी एंड दैट्स व्हेन थिंग्स गॉट वेरी वेरी स्टर्न। सो ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड इट इज वेरी वेरी लेटेस्ट व्हेन राजपाल यादव के साइड रिपोर्टेडली रिमार्क्ड दैट you know jo complainants hai they were not poor jo on chair justice hai they strongly objected and told ki bhai iski jagah to jail mein hi hai, that's what he said. Now the court has now given him one last chance to make the payment aaj ki date mein, yes today, and the case is scheduled again kal ke liye. So the story is actually still unfolding and yeah, financial commitments, court commitments, thoda aur time de do ka kabhi eventually deadline aisa aata hi nahi hai. Once you have committed, you need to pay upfront for it. अब इसका क्या होगा वो तो अब कल के जो है सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। सडनली आई साउंडेड लाइक कि कल की सुनवाई के बाद पता करेंगे। यही पर रेडियो बस्ती 24/7 ऑफ कोर्स वी शैल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड ऑन दैट। कमिंग अप गाने का अपडेट्स, काबिल मूवी, विशाल ददलानी एंड मेरे दिल की तरह ये भी कह रहे हैं मो अमोर।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: और जब इतनी सारी फेस्टिव सीजन की बात हो ही रही है तो ये बात भी सुनते हुए जाइए, फायदे की है। जब जब हम आएंगे तो फायदे की बात ही करते हुए जाएंगे। भाई फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी की बात ना हो और गोल्ड ज्वेलरी की बात ना हो, जैसे सो वेल गोल्ड ज्वेलरी लेने का तो मन हो जाता है, पर सवाल एक जरूर आता है कि अभी लू कि थोड़ा वेट कर लू, क्योंकि गोल्ड रेट अगर कल बदल गया तो फिर कल ही ले लेना चाहिए था, और नीचे आ गया तो अच्छा हुआ रुक गए थे। गुड टाइमिंग। बट यही टाइमिंग के चक्कर में सारा की सारा जो है टाइमिंग इधर उधर हो जाता है। बेसिकली ज्वेलरी खरीदनी है, इकोनॉमिस्ट भी हम खुद ही बन जाते हैं इन सभी चीजों में, एंड वेरी राइटली सो एज वेल। वेल ज्वेलर्स, हमारे वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर्स, वी ऑल नो देम राइट, दे आर ब्रिंगिंग बैक दैट लिटिल बिट ऑफ सर्टेनिटी विद इट्स फेस्टिव प्राइस प्रॉमिस। सो हियर्स हाउ इट वर्क्स। सो आपने पे करना है जस्ट 10% एडवांस एंड प्री बुक करना है आपकी ज्वेलरी। If the gold price grows up, you are protected from that increase. And the interesting part is, कि अगर gold price drop करता है, you get the benefit of the lower rate. Now that's the principle behind Joyalukka's gold rate protection program. So basically, rate ऊपर गया तो protection, rate नीचे गया तो lower rate. Festive shopping में heads I win, tails I don't lose वाली जो feeling है, that is another level altogether. And there's something extra if you are booking digitally. So first time bookings through the Joyalukka's mobile app receive $100 ka jo hai diamond gift voucher as per the current Singapore promotion. Advance bookings under this offer are open till 21st of October, and advance jo hai remains valid till 7th of November. So perfect timing too, because of course it's the festive season and Deepavali is also around the corner, and gold has always had that special please हमारे festive traditions में. So whether you are buying something अपने लिए, gifting someone, simply making special occasion, ये ज्वेलरी का विश लिस्ट अगर ऑलरेडी बन चुका है, मे बी दिस इज द टाइम टू स्टॉप एंड यू नो बस देखने के लिए जा रहे, ये नहीं कहना है, बिकॉज वी ऑल नो हाउ दैट स्टोरी एंड्स। Joyalukka's festive price promise, pay 10% advance, pre-book your jewelry at the lowest applicable gold rate, terms and conditions applied. अब चलो गोल्ड की बात हो गई, प्लेलिस्ट में भी कुछ सोना सोना हो जाए।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी, और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
2: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
3: हाँ जी, मैं चेक ही कर रही थी कि सारी बातें बता दी मैंने कि आपको नहीं बताई। गुड मॉर्निंग, रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा आपके साथ, यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। भाई ट्यूसडे मॉर्निंग की हमारी मस्ती वाली मीटिंग का टाइम अब खत्म होने को आया है। आज बड़ी सारी हमने बातें की कि कहीं ट्रैवल थोड़ा महंगा हो गया, कहीं सिंगापुर की हवा में आज थोड़ा सा संभल के गया द PSI एंड ऑल एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट। वी प्लेड द कॉन्टेस्ट एंड एवरीथिंग। क्या इवेंट्स होने वाले हैं, फेस्टिव शॉपिंग कहाँ से करनी है, गोल्ड की शॉपिंग कहाँ से करनी है। बेसिकली लाइफ की तरह इस शो में भी एकदम मिक्स्ड प्लेलिस्ट रहा, लेकिन सुबह जो बात हमने शुरू की थी एंड भी उसी से चलिए करते हैं, दैट हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस हर दिन में कुछ अच्छा ढूंढ लेना वो जरूरी है। सो हो सकता है आज वो अच्छा प्रोडक्टिव डे हो, किसी का फोन कॉल हो, एक कप चाय हो, या फिर सिंपली वो गाना जो अचानक से मूड बना दे। और गाने वाले डिपार्टमेंट का तो हमने वैसे भी वी टेक वेरी गुड केयर ऑफ दैट। सो मैं अंतरा आपकी एंड अब लेती हूँ आपसे परमिशन, बट यहाँ पे मस्ती बिल्कुल और कहीं नहीं जा रही है। अभी तो म्यूजिक कैफे आएगा, फिर उसके बाद हमारी नूपुर आएगी एंड शाम को वापस से डियर मस्ती दिल से पर आपसे होगी मुलाकात। तो फिलहाल के लिए हैव अ गुड एंड फैंटास्टिक डे अहेड। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड या ट्यूसडे को enjoy करिए, just find something good and be happy about it for the rest of the day। जैसे कि आज की मेरी सुबह की चाय, जो mood set किया है ना उसने, one good cup of tea can do miracles, I tell you। Good morning and bye bye।

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी. Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अर्जुन आएंगे
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे. फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे.

0: तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?
1: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
0: Your Musti Music Cafe is...

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट एक जगह जाकर एब्सोल्युटली फेल हो जाता है। बताऊं क्या, मैंने तो नोटिस कर लिया है, आप अपना बताना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एनीवेज, ये जो है ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट जब डाइटिंग पे आता है ना कि नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, इतने बजे अपने फूड से साइन ऑफ कर लेना है, सुबह उठते ही ये रिचुअल फॉलो करना है, दोपहर में ये करना है, कहीं पार्टी में गए तो ये करना है, हाय हाय हाय हाय, आप जितनी कोशिश कर ले आप थोड़ा बहुत तो फेल हो ही जाएंगे। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है यार, आप तो हेल्दी पने की लाइन में बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, एनीवेज, आगे निकलते निकलते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर और भी बहुत सारी बातें कर रही हैं आपका इंतजार। सो डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
0: ओहो, एक्टर्स को सिंगर्स को लगता है कि वो बहुत स्पेशल है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेशल है, उनके दो सींग हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो एक पॉइंट के बाद सारे एक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स, सारे सिंगर्स हमारे जैसे ही होते हैं, वो भी आपकी और मेरी तरह परेशान होते हैं, रोते हैं, सेविंग्स करते हैं, अपने बैंक ट्रांसफर्स चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और इसी के साथ साथ ट्रैफिक भी झेलते हैं, राइट। रेडियो मस्ती पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें अपने ऑस्कर विनिंग कंपोजर सिंगर एआर रहमान जो है वो बेंगलुरु जैसी सिटी जो कि आईटी हब है, ट्रैफिक हब है, वहाँ पे ट्रैफिक में घंटों फंसे रहे और वहाँ की वीडियो निकल कर आ गया, और ऐसे निकल कर आया कि इवन अ ऑस्कर विनर कांट एस्केप बेंगलुरु ट्रैफिक। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीजें आसपास होती रह रही है, एक्स्ट्रा स्पेशल किसी को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: बस बस बस दिवाली आने वाली है। हाँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप इंडिया की टिकट करवाएं या ना करवाएं, लेकिन आपके लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हाँ कौन कौन से शहर है, उन सब की टिकट्स जो है ना वो यहीं बैठे बैठे मंगवा देती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ के जो होम डेकोर प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ का जो फ्लेवर है वो चलकर सिंगापुर आ रहा है। बिकॉज हर बार की तरह जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो होने जा रही है 16th to 25th October के बीच, हॉल 9 फॉयर 3 सिंगापुर एक्सपो। 10 डेज दीपावली बिगेस्ट डिस्काउंट सेल है, और अगर आपने जमकर शॉपिंग कर ली ना तो आपको मोबाइल फोन जीतने का मौका, क्रूज पे जाने का मौका, इवन पेरिस, रोम, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई जाने का मौका भी मिल सकता है। डेली कैशबैक से लेकर सरप्राइजेस गिफ्ट हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आप इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको अपना एक क्वालिटी टाइम मिल सकता है। डोंट फॉरगेट 16th to 25th October जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो, हॉल 9 फॉयर 3 सिंगापुर। मैं आरजे अनुप्रभा आपके साथ।

0: नाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: You know what? हमें ऐसा लगता था कि स्कूल एंड कॉलेज टाइम में जब परसेंटेज की बात होगी, नंबर्स की बात होगी, तो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी। भाई जीवन वहां से निकलने के बाद भी नंबर्स में ही चल रहा है। दुनिया भर में सर्वेज, दुनिया भर में जो एक आंकड़े हैं, सच्चाई है, वो परसेंटेज एंड नंबर्स में ही एक्सप्लेन करी जा रही है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपको एक्सप्लेन करना चाहेगी कि एक रिसर्च निकल कर आई है जिसमें इंडिया से रिलेटेड जो हेल्थ को लेकर कंसर्न है वो दिखाया गया है। मतलब इंडिया में 90% हेल्थ का जो बर्डन है, हेल्थ की परेशानियां हैं, वो कैसे आ रही हैं? हाँ, टोबैको कंज्यूम करने की वजह से, राइट। सो 241 मिलियन जो लोग हैं वो टोबैको कंज्यूम करते हैं एंड उनके हेल्थ इश्यूज सर्वे में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो एट द एंड हेल्थ इज अ वेल्थ, ये लोग कब समझेंगे मेरी जान। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

ये चीजें कितनी नॉर्मल हो गई है बोलना कि नहीं नहीं नहीं नहीं हम कैश तो रखते ही नहीं है, जेब में हाथ डालते हैं तो सिर्फ एक वॉलेट निकलता है जिसके अंदर 3-4 तरह के कार्ड होते हैं, या नेक्स्ट पॉकेट में हमारे पास इंटरनेट से स्कैन करके और पेमेंट करके जो ऑप्शंस है ना उसकी बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाती है। सो द पॉइंट इज कि हर कोई कैशलेस होना चाहता है जब तक उनके संग थोड़ी सी कोई चोट नहीं हुई होती है। हाँ, तो दुनिया भर के स्कैम्स भी इतने सारे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक ले रहे हैं। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि जिस तरह से इंडिया के UPI ट्रांजैक्शन का सिलसिला सिंगापुर तक पहुंच गया, एंड सिर्फ सिंगापुर ही नहीं ग्लोबली इसको एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि कोई इंडियन किसी कंट्री जाए तो उसे ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत ना हो। लेकिन इंडिया में ये ट्रांजैक्शंस की लिमिट बहुत बढ़ती जा रही है, मतलब लास्ट ईयर 114 बिलियन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 145 बिलियन तक पहुंच चुका है। सो कुल मिलाकर लोगों को आदत तो लग रही है मेरी जान, किस चीज की? ऑनलाइन पेमेंट करने की और जेब में हाथ डालकर कैश ना निकालने की। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।

ये कौन सी चीज है जिसके बिना कोई भी फेस्टिव ओकेजन फीका पड़ जाता है? भाई ध्यान जाता है सबसे पहले सेलिब्रेशन पे और उसमें पहनी हुई ज्वेलरी पे, राइट? ज्वेलरी के बिना कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता यार। सो भाई फेस्टिवल्स का टाइम है और ज्वेलरी में इन्वेस्ट ना करें ऐसा हो नहीं सकता। रेडियो मौसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपड़ाओ के साथ। सो इस बार हर त्योहारों की तरह अपना प्रॉमिस निभाने के लिए आ चुके हैं जोया लुकास। गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1% ओनली। क्या बात है यार। प्री बुक योर ज्वेलरी एट द लोवेस्ट गोल्ड रेट और 10% एडवांस दे दीजिए। प्रोटेक्शन मिलेगा आपको गोल्ड प्राइस पे और लोअर रेट आप एंजॉय कर पाएंगे। एक्सक्लूसिव ऐप ऑफर भी है। आप फर्स्ट टाइम बुकिंग्स करते हैं जोया लुकास के मोबाइल ऐप से तो आपको 100 सिंगापुर डॉलर का डायमंड गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा और ये ऑफर सिर्फ 7th of November तक है। डेफिनेटली TNC अप्लाई, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। गोल्ड के रेट बढ़ जाए उससे पहले कुछ तो कदम उठा लो मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का
2: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
0: टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: आपको गुस्सा आता है कभी कभी, बहुत रेयरली, या हर रोज नाक पर बैठा रहता है? हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि गुस्सा आने के लिए दुनिया ही जिम्मेदार है यार। वो ऐसी बातें कर लेते हैं कि आ जाता है गुस्सा, वरना हम तो सीधे ही हैं। हाँ, इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ना कई बार इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि मुद्दे की बात करो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग चपड़ा आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि कितने साल हो गए हैं कि जो खान्स ब्रदर हैं, मतलब अरबाज खान, सलमान खान, सोहेल खान, एक ही फैमिली में सिर्फ सलमान खान जो है वो हमेशा पॉपुलर रहे हैं और बाकी लोग थोड़ा सा बैकएंड में रहकर कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं लेकिन मूवीज में नहीं चल पा रहे हैं। आपको ये बात तो पता ही है और ये किसी से छिपा भी नहीं है। सो रिसेंटली अरबाज खान जो है ना वो किसी ज्वेलरी शोरूम के इनॉग्रेशन में पहुंचे और वहां पे मीडिया वालों से इंटरेक्शन भी था और इंटरेक्शन करते करते किसी ने सलमान खान से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया तो अरबाज खान को इस बार गुस्सा आ गया। उन्होंने बोल दिया कि क्या ये इस इवेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है? हाँ, तो वो इवेंट से उठकर चले गए। तो लोगों को लग रहा है कि बहुत वक्त से अरबाज और सलमान साथ दिखाई भी नहीं दिए, हो सकता है कुछ घर पे लड़ाई शड़ाई हो गई हो, ना? You never know. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज आपके साथ मस्ती मॉर्निंग शो।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: भाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी एआई की दादागिरी, नहीं चलेगी। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो एक अपनी नई रियलिटी पेश करी जा रही है ना, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन टिकने वाली है। क्योंकि जिस तरह से जो एक्टर्स हैं वो धीरे धीरे एआई डीप फेक्स को लेकर कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और इसके रिगार्डिंग रूल्स की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो खेल है कमर्शियली बिना परमिशन वाला, ये कितने वक्त तक चलेगा? हाँ, नुकसान ज्यादा होने वाला है जो भी इसका इस्तेमाल करेगा। सो रेडियो मसी 24/7 लाइफ पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और बताना चाहूंगी यामी गौतम, राइट? यामी गौतम अपनी अपकमिंग मूवीज के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि मेरे से रिलेटेड कोई भी एआई वीडियो फोटोज बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन चीजों के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हो सकता है एक्शन भी ले लिया जाए, राइट? सो बाय द टाइम जो एक्टर्स हैं वो बहुत ही क्विक एक्शन लेने के मूड में हैं। आप सोच लीजिए, आपको नेक्स्ट एआई से जुड़ा हुआ कोई रिस्क लेना है या नहीं? रेडियो मसी 24/7 लाइफ पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, मस्ती मॉर्निंग शो।

0: या बेबी।
1: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
2: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
3: देखो देर आए दुरुस्त आए है ना, या फिर जब नींद खुली तब सवेरा, हाँ जब अपने पे आ गई तब समझ में आया, ये सारे मुहावरे सूट होते हैं किसे, इस सिचुएशन को जो कि कंसर्न बनकर निकल कर आ रहा है कि आप जब बाहर निकलते हैं तो आप खाते क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ फूड क्या है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज यहाँ पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। दुनिया में कई जगह एंड सिंगापुर में भी बॉइल्ड फूड जो है ना उसका एक अलग रिचुअल है, एक अलग कुजीन है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही इंडियन कुजीन की बात आती है तो उसकी शुरुआत ही ऑयल से होती है ना, कि कौन से ऑयल का इस्तेमाल करके, कौन से मसाले डालकर, किस तरह से चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करी जा रही है। इंडिया के कुछ स्टेट्स में फूड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जिस ऑयल में फूड बनाया गया है ना उसको ओपनली आपको डिस्क्लोज करना होगा कि ये देसी घी है, ये सरसों है, ये ऑलिव है या कुछ और है। ये जो ऑयल के नेम्स हैं अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए जाते थे तो अब इन्हें मैंडेटरी किया जा रहा है। वो होता है ना, जब त्योहार आने वाले होते हैं तभी इन चीजों पे कुछ ज्यादा ही एक्शन लिया जाता है, उससे पहले तो जो चल रहा है चलता जा रहा है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

आप एक खास इंसान है, तभी तो आपको ना चीजें ऑथेंटिक, ओरिजिनल, वो कहते हैं ना, मतलब एकदम फीलिंग वाली पसंद है। That's why इस नवरात्रि आप गरबा में भी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाले हैं, राइट? सो रेडियो पसी 24/7 लाइव पर मैं आज रुपड़ आपके साथ एंड सिंगापुर में आप ऑथेंटिक गरबा प्ले करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो सिंगापुर गुजराती सोसाइटी आपके लिए लेकर आए हैं सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि। दिस 16th, 17th and 18th October को आपको पहुंचना है लगुना बॉल रूम, 200 थानी लगुना, 11 लगुना गोल्फ ग्रीन सिंगापुर, बिकॉज यहाँ पर हमारी सबसे पुरानी, सबसे ऑथेंटिक जो गुजराती कम्युनिटी है वो एकदम अलग तरह से, एक अलग पैटर्न में, मतलब जितनी भी होती हैं गरबा में, जितने भी फॉर्म्स होते हैं ऑथेंटिक गरबा में, उस तरह से आपको माता का आराधना करते हुए ये गरबा परफॉर्म करना है। तो इसके टिकट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं जब भी हम देखने जाते हैं, तो बता देती हूँ टिकट्स अवेलेबल हैं sgs.org.sg/navratri2026 लॉग ऑन करने पे। सो क्विकली अपने टिकट्स पिक करो और बाद में मुझे थैंक्स कह देना चलेगा। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: वंस इन अ रेयर डे ऐसा होता है जब आप किसी भी बात की टेंशन नहीं लेते हो, आपके माथे पर जरा भी शिकन नहीं होती है, आप एकदम खुशी खुशी घर जाते हो, ऑफिस जाते हो, सोशल लाइफ एंजॉय करते हो और भी ना जाने क्या क्या क्या क्या। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और मैं तो चाह रही हूँ कि ये जो रेयर डेज है ना, जब आप एकदम स्मूदली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ये डेज फ्रीक्वेंटली आ जाए, बिकॉज हर वक्त तो सब कुछ अच्छा नहीं रह सकता है। चॉइसेस बदलती रहती हैं, मूड्स बदलते रहते हैं, बट स्टिल मूवीज जो है वो हमें एंटरटेन करती रहती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड आपको बताना चाहूंगी दृश्यम मूवी जो है ना, वो अब थर्ड टाइम लोगों को एंटरटेन कर रही है। हाँ जी, ये मूवी दो बार पहले भी आई अलग अलग पार्ट्स में क्लाइमेक्स के साथ, और इस बार भी जब ये क्लाइमेक्स के साथ मूवी थिएटर्स में आई तो लोगों को पसंद आई। और बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि एक ही मूवी तीन बार किसी को एंटरटेन करके जाए, तो अगर हम ये तीन वाले सीक्वल्स की बात करें तो उसमें और भी मूवीज़ हैं, जैसे गोलमाल हो गया, भूल भुलैया हो गया, ये सब वो मूवीज़ हैं जो लोगों ने एक्सेप्ट करी हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है इसके पार्ट बनाते जाओ मज़ा आएगा। लेट्स सी ये मूवी का जो आंकड़ा है वो प्रॉफिट वाइज कहाँ तक पहुँचता है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।
1: छत पक्षियां रंगा दी धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया, दोनों को ही चाहतो ना।

0: के।
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious.

0: चीजें हमें क्लासी चाहिए, लग्जरियस चाहिए एंड हटके चाहिए और डिजाइनर के हैंड पिक्ड आइटम्स चाहिए, लेकिन इंडिया नहीं जाना है, पर इंडिया वाला फ्लेवर चाहिए। हाँ, सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपके साथ, आपको मैं पर्सनली बताना चाहूंगी ये सब कुछ इंडिया से चल के सिंगापुर आ रहा है। हाँ जी, हाई लाइफ एग्जिबिशन इज कमिंग टू सिंगापुर। सो 75+ लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स जो है ना, वो आपको एक ही रूफ के नीचे मिलने वाले हैं, मतलब फैशन, स्टाइल, डेकोर एंड लग्जरी का कॉम्बिनेशन। 13th and 14th October 10 AM to 8 PM के बीच आपको पहुंचना है हॉलीडे इन ऑर्चर्ड सिटी सेंटर। बिकॉज इसमें ना सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए डिजाइनर पीसेस मिल सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए मिल सकते हैं, आपको ब्राइडल कलेक्शन मिल सकता है, ब्राइड मेड्स कलेक्शन मिल सकता है, आपको सीजनल फेस्टिव कलेक्शन मिल सकता है। सो डेफिनेटली ये जो दिन है ना, ये काफी आपके लिए फ्रूटफुल रह सकते हैं। 75 से ज्यादा डिजाइनर, सोचिए एन नंबर ऑफ कलेक्शन आपको मिलेगा, राइट? तो क्विकली आप भी विजिट कीजिए 13th and 14th October 10 AM to 8 PM हॉलीडे इन ऑर्चर्ड सिटी सेंटर। मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ ऐसी ही काम की बातें करती रहूंगी। मेरी जान
1: ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

ये जो कैट फाइट वर्ड है ना, ये कहीं से नहीं आया, ये रियलिटी से आया है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज हूं पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और ये जो रियलिटी है वो बाय द टाइम इतनी खट्टी होती जा रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि मूवी से ज्यादा मसाला तो हमें बाहर मिल जाएगा। सो आपको बताना चाहूंगी कि जब से गोविंदा जी के साथ उनकी अपकमिंग मूवी की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकर जो है वो साथ में दिखी है और हर जगह दिखाई दे रही हैं, तो ये जो अफेयर है, ये र्यूमर्ड अफेयर जो है वो आग पकड़ता जा रहा है। मतलब उन्हें होम ब्रेकर का टैग दिया जा रहा है। सो कुछ एक्टर्स ने जरूर कमेंटबाजी करी है, लेकिन अभी रिसेंटली राखी सावंत ने भी बोल दिया है कि अगर वो मेरे सामने आ गई ना तो देख लेना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। सो डेफिनेटली ये जो कैट फाइट का माहौल बनाया जा रहा है, अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाई जा रही है, ये मुझे लग रहा है आने वाली गोविंदा की मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डोंट यू थिंक सो? हाँ, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपके साथ थी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। सो आप बने रहिए यहीं पर, आने वाले गाने एंजॉय कीजिए।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
3: का। अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
4: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
5: बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी-छोटी बातें छोड़ो और बड़े-बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9158963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर जय

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो,
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले है।
4: जोश में रहो।
5: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
6: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
7: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
6: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

करने लगी, एक रात में ही लव से होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी। मैं कभी बहुत ज्यादा सैड, कभी बहुत ही फनी, मेरे को याद के बैक कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी। टिप्पणी पे ना करो टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी गुम फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: दे आर फ्रेश, दे आर फ्रेश।

छट्टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: The Masti Partner Event.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live pe. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Welcome, namaste. Welcome to another beautiful episode of Dear Masti Dil Se. जी हाँ, शुरू हो चुका है वो वक्त जहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे दिल की बातें। मैं आपकी अंतरा यहाँ पर आपके साथ on Radio Masti 24/7. You know, जैसे कि हर बार ही एक थॉट के साथ शुरू करते हैं कि लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं और कितनी सिर्फ सिचुएशंस होती हैं जिनका जवाब हमें पता नहीं होता है। बिकॉज हमारा दिमाग ना हर चीज का आंसर उसको तुरंत चाहिए, एकदम इंस्टेंट नूडल्स के जैसे। फ्रेंड ने कुछ अजीब कहा, इसका मतलब क्या था? पार्टनर थोड़ा सा चुपचाप है, कुछ हुआ है क्या? किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड है, राइट चॉइस है क्या? एंड समटाइम्स हम इतना एनालाइज करते हैं कि ओरिजिनल सिचुएशन छोटी रह जाती है और हमारे दिमाग में उसी की OTT सीरीज बन जाती है मल्टीपल सीजंस के साथ। बट आई हैव रियलाइज्ड समथिंग, हर सिचुएशन का इमीडिएट आंसर होना जरूरी नहीं है। समटाइम्स यू नीड अ कॉन्वर्सेशन, समटाइम्स यू नीड अनदर पर्सन का पर्सपेक्टिव, समटाइम्स यू नीड अ लिटल टाइम, और कभी कभी यू जस्ट नीड समवन टू से कि हाय यार, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर फीलिंग दिस वे। And that's what this space is all about. आज भी आपके letters होंगे, कुछ relationships की बातें होंगी, कुछ everyday situations जो बाहर से बहुत simple लगती हैं, पर जब खुद के साथ होती हैं, तो उतनी simple नहीं लगती। हम किसी को right या wrong declare बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करते, कोई judgment नहीं होती, we just look at it from different sides and maybe find a way forward, but together. So wherever you are listening from, just settle in. Aapke letters, aapki feelings aur hamare dil se conversations. Welcome to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. That's right, आपकी अंशा यहाँ पर बिल्कुल वापस आ चुकी है और सबसे पहली चिट्ठी को लेकर वो वापस आई है। And I have a feeling कि ये सिचुएशन काफी लोगों को शायद फेमिलियर लगे। शुरू करें। So, चिट्ठी कहती है, डियर मस्ती, मेरी एक एक्वेंटेंस जैसी है जिसके साथ प्रोफेशनली काम करना पड़ता रहता है। काम की वजह से फ्रेंडशिप भी है, बट वी आर नॉट वेरी वेरी क्लोज। सिंस वी नीड टू वर्क टुगेदर, ऑब्वियसली आई ट्राई टू मेंटेन अ गुड इक्वेशन एंड ऑनेस्टली आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प व्हेनेवर नीडेड। बट देर आर टाइम्स व्हेन दिस पर्सन रियली टेस्ट्स माय पेशेंस। अगर काम में कुछ मेसअप हो जाए, इंस्टेड ऑफ सिंपली एक्सेप्टिंग इट एंड फिक्सिंग इट, देर इज ऑलवेज अ लॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई इट हैपेंड। और कभी कभी सीरियस सिचुएशन में भी बिहेवियर इतना रैंडम होता है कि मुझे लगता है व्हाई नो कॉमन सेंस हैज बीन यूज्ड। सिचुएशन की सीरियसनेस को तो कभी कभी समझना चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है कि काम करवाना भी है, सो आई कांट सिंपली डिस्टेंस माई सेल्फ दैट आई कांट डील विद इट। जब किसी के साथ प्रोफेशनली इक्वेशन मेंटेन करना जरूरी हो डियर मस्ती, बट उनका एटीट्यूड रिपीटेडली आपका पेशेंट टेस्ट करे, तो ऐसे पर्सन को हैंडल कैसे करे विदाउट कॉन्स्टेंटली गेटिंग इरिटेटेड। वाओ, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग, या you know this feeling, right? Okay, because yahan difficulty ye nahi hai ki you don't like this person. In fact, you have clearly said that you are on good terms, you help them, there's even a certain friendship. The frustration comes because you cannot depend on them in the way the situation sometimes requires. And I think sabse exhausting part mistake bhi nahi hota hai, mistake sabse hoti rehti hai. What happens after the mistake? Aap solution mode mein rehte ho ki isko fix kaise kare, aur samne wala explanation mode mein rahe ki actually ye hua tha, phir aisa hua, phir waisa hua. And if it is long, I can imagine, aur andar se aap yahi keh rahe hote ho ki mujhe documentary nahi chahiye, solution chahiye, right? Then at those moments where situation aapke liye clearly serious hai, but samne wale ka response somehow seriousness jo hai wahan pe match nahi kar raha hai, that's when the irritation starts. But yahan ek tricky baat hai, you do need this professional equation. तो ना completely ignore कर सकते हैं, ना हर बार frustration निकाल सकते हैं, and obviously हर तीसरे दिन किसी adult को please use common sense ये भी नहीं बोल सकते हैं. तो what do you do? Lower your expectations, yeah, do you become more direct, do you stop helping beyond what's necessary? Is there a way to deal with the behavior without letting it disturb your own head every single time? You know what, I'm not done with this letter yet. Ek musical break lete hain, and when I come back, let me tell you that maybe what I feel about it. Alright, so stay tuned. Ye hai Dear Masti Dil Se. And if you feel that this is somewhere related to you as well, yeah. आती हूँ वापस थोड़ा सा सोच के।
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं हूं आपकी अंशा यहां पर आपके साथ। ब्रेक से पहले जो लेटर था, लेट्स टेक अ क्विक रीकैप। एक ऐसे

पर्सन के बारे में जिनके साथ प्रोफेशनली काम करना पड़ता है, इक्वेशन अच्छी रखनी जरूरी है। आप हेल्प भी हैप्पीली करते हैं, बट कभी कभी देयर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स रियली टेस्ट्स योर पेशेंस। मिस्टेक हो जाए तो सोल्यूशन से पहले लंबी जस्टिफिकेशन, और सीरियस सिचुएशन में कभी ऐसा रैंडम रिस्पॉन्स की मन में एक ही थॉट आता है कि कभी तो सिचुएशन को समझ लो। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव टू डील विद समवन बट यू कैन नॉट कीप गेटिंग इरिटेटेड एवरी टाइम दे बिहेव इन अ वे यू डोंट अंडरस्टैंड? आई थिंक एक स्लाइटली डिफिकल्ट चीज शायद एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, स्टॉप एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू रिस्पॉन्ड द वे यू वुड, बिकॉज आई फील इरिटेशन का एक बड़ा पार्ट वहां से भी आ रहा होता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मेरी मिस्टेक होती तो पहले पहले मैं फिक्स कर देती, बाद में एक्सप्लेन कर देती, एब्सोल्युटली, बट दैट्स यू। मेबी दिस पर्सन गेट्स डिफेंसिव व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, just think of it that way. Maybe justification is their way of protecting themselves, maybe their sense of urgency genuinely isn't the same as yours. Understanding that doesn't mean that you will have to like it or excuse it. It simply means don't waste your energy being surprised by a pattern you have already seen before. A practical part pe aate hain, when something goes wrong and explanation starts, I understand there was a reason, aisa kuch से शुरुआत करूंगी, एंड अभी पहले लेट्स फिक्स दिस बिकॉज दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड अर्जेंटली, वी कैन डिस्कस व्हाट हैपेंड लेटर। I know someone who had taken this approach, and I think it's a very sane way of dealing with it, because this is something which has to be dealt at that point of time without, you know, losing your own mental sanity. Bring the conversation back to the task and, being clearer with the communication ki itna deadline hai, yahan tak ho jayega, important things in writing and all those things. Basically, reduce the space for randomness and helping, of course, help kijiye if you genuinely want to, but don't keep compensating for somebody else's lack of planning because kaam to karwana hi hai, because slowly you will start resenting the person for something you have repeatedly stepped in to manage. Professional relationships over the time period, I've understood, don't always need emotional closeness. Sometimes they simply need clarity, consistency, and a little emotional distance. So, ek aur cheez jo main, I think I would kind of remind myself ki mujhe is insaan ko badalna nahi hai, mujhe bas ye decide karna hai ki main is insaan ke sath effectively kaise kaam kar sakti hu, because common sense bhi na, unfortunately common ka definition sabka same nahi hota hai. So protect the world, be clear about what you need and where possible, stop carrying their behavior home in your head. I really hope this helps. Yeh dear musti indul se.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: लोग मुझे डरपोक कहते हैं, लोग मुझे बहुत वीक लड़की बोलते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि नहीं यार, तुम कभी लाइफ में कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाओगी क्योंकि तुम एक डरपोक हो, और शायद मुझे इन बातों का फर्क भी नहीं पड़ता। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे अनुपम आपके साथ। एंड जब आपको लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता है ना, तो शायद आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं। डोंट यू थिंक सो? एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर है, उन्होंने मुझे पता है क्या बताया है। डियर मस्ती दिल से, मैं वो लड़की हूँ जिसे लोग चेहरे पर डरपोक बोल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लिफ्ट में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं MRT में अकेले जाने से डर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज तक कभी डिनर पे अकेले नहीं गई। और लोग जब मुझे डरपोक बोलते हैं तो मुझे इन बातों का बुरा भी नहीं लगता, बट कभी ना कभी एक सम पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि क्या मैं सच में इतनी डरपोक हूँ? क्या लगता है तुम्हें? एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपने ये बात मुझ तक भेज दी है, मतलब इतने लाखों लोग हमें सुन रहे हैं और आपने अपना सवाल मुझ तक भेज दिया है, तो आप डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, आपकी अपनी लाइफ में ना कुछ रूल्स होंगे, कुछ अपना बैक स्टोरी होगी। आप अपनी लाइफ में बहुत डेलिकेट वे से बड़े हुए होंगे, सो आपकी अपब्रिंगिंग, आपका एटमॉस्फेयर, आपका एम्बियंस, आपके आसपास के लोग, वो चीज़ें जो है ना, वो आपका एक नेचर बना देती है थोड़ा सा डर लगाने वाला। बट स्टिल, अगर आपके मन में आ गया है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बीट कर सकते हो, तो डू इट। और अगर आप नहीं भी करते हो तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, ओके? सो वैसे भी लड़कियां ना बहुत खूबसूरत, डेलिकेट और प्यारी सी और थोड़ी सी सहमी सी खूबसूरत लगती हैं, सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियलिटी में भी। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे अनुपम, और ऐसा ही एक बहुत डेलिकेट सा गाना कर रहा है आपका इंतजार।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: चलिए अब आपकी अंतरा की बारी ऑन रेडियो मस्ती 24/7 जहां चल रहा है डियर मस्ती दिल से। जी हाँ, चिट्ठियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए और सीधा बढ़ते हुए चिट्ठी मेरी ये कहती है कि डियर मस्ती, मैंने रिसेंटली वेट लूज किया, दैट्स नाइस, एंड एवरीवन सेज यू लुक सो मच यंगर। आई नो इट्स मेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट अब मैं सोचने लगी हूँ तो मैं पहले कैसे लगती थी। क्या अच्छे इंटेंशन से दिया गया कॉम्प्लीमेंट भी अनकंफर्टेबल फील करा सकता है? एब्सोल्युटली करा सकता है, एंड आई थिंक ये हम सभी के साथ हुआ है, राइट? कोई बोलता है वाओ यू लुक सो गुड नाउ, और हम स्माइल करके बोलते हैं थैंक यू सो मच, बट कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी सी आवाज की लुकिंग गुड नाउ, पहले मुझ में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम थी। सी देखिए, सबसे पहले हर कॉम्प्लीमेंट के पीछे हिडन एजेंडा ढूंढना भी जरूरी नहीं है, राइट? मोस्ट प्रोबेबली पीपल जेन्युइनली नोटिस्ड अ चेंज एंड दे लाइक व्हाट दे सी एंड दे वांट टू अप्रिशिएट यू एंड दैट्स इट। उन्होंने वो सेकेंड मीनिंग जो आप सोच रहे हो शायद सोचा भी नहीं होगा, मतलब आई थिंक इट्स जस्ट इन योर माइंड, ऐसा इन माई ओपिनियन ओनली, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती हूँ। मैं अपनी ही कहानियां अपने दिमाग के अंदर काफी बना चुकी हूँ, आई एम वेरी मच केपेबल टू डू सो, बट दैट डजंट हेल्प मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट येस, अ कॉम्प्लीमेंट कैन स्टिल मेक यू अनकम्फर्टेबल, स्पेशली वेट एंड एज, स्किन, बॉडी, ये काफी पर्सनल चीजें होती हैं, और कभी कभी कॉम्प्लीमेंट अनोइंगली ये मैसेज आपको देता है कि योर करंट वर्जन इज समहाउ बेटर देन योर प्रीवियस वर्जन, एंड Maybe that's the part bothering you. But मैं यहाँ पर एक चीज और कहूंगी, प्लीज अपने पुराने वर्जन को इस कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट खड़ा मत कीजिए। यू डोंट हैव टू थिंक दैट इफ आई लुक गुड नाउ आई मस्ट हैव लुक्ड बैड देन। नो, यू लुक लाइक यू देन, यू लुक लाइक यू नाउ एज वेल, एंड अगर समवन सेज दैट यू लुक यंगर, यू कैन सिंपली टेक द इंटेंशन यू वॉन्ट फ्रॉम इट, दे आर सेइंग आई लुक गुड सो थैंक यू, बस move on. और अगर body related comments genuinely bother करते हैं आपको, especially from someone close, you can absolutely say that thank you, but honestly मुझे weight या age पर comments थोड़े से awkward लगते हैं। Communication again, just tell them, कोई drama, कोई offense नहीं, just information, because compliments are interesting, देने वाले की intention, नियत जो है काफी important होती है, but receive करने वाले का comfort भी equally important होता है। So yes, compliment अच्छे intention से आ सकता है, और फिर भी आपको अच्छा ना लगे, दोनों चीजें एक साथ true भी हो सकती हैं। I hope this helps. ये है Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. But ये जो आने वाला गाना है, I hope this makes you feel good.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। अब है आपकी अंतरा की यहाँ पर बारी और अगली चिट्ठी की भी। ये चिट्ठी कहती है, डियर मस्ती, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही अर्न करते हैं बट मनी को काफी डिफरेंटली देखते हैं। मुझे ट्रैवल, ईटिंग, एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करना पसंद है, उन्हें सेव करना बिकॉज सेविंग गिव्स हिम सिक्योरिटी वो पसंद है। दोनों फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी एक्सपेंसिव प्लान्स आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं। जब मनी को लेकर प्रायोरिटीज डिफरेंट हो तो रिस्पॉन्सिबल कौन डिसाइड करता है? गुड क्वेश्चन माय डियर लिसनर। आई थिंक यहाँ पहला काम ये करना है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है ये डिसाइड करना ही बंद अगर कर दे तो। हाउ अबाउट दैट? बिकॉज फ्रॉम व्हाट यू हैव रिटन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, बट आप दोनों के लिए मनी का मीनिंग डिफरेंट है। फॉर यू मनी सेज लाइफ मिली है, एंजॉय करो, एक्सपीरियंसेस बनाओ, मेमोरीज बनाओ। फॉर हिम मनी सेज कल कुछ हो गया तो आई वॉन्ट अस टू बी सिक्योर। एंड एक्चुअली दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्पेंडिंग पर्सन सेवर को कि यार तुम तो लाइफ एंजॉय ही नहीं करते हैं बोलने लगे, और सेवर स्पेंडिंग पर्सन को कहे कि तुम्हें फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं। ऐसा चीज जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, राइट? फिर डिस्कशन पैसे का कम और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज्यादा बन जाता है। आई वुड एक्चुअली मे बी सिट टुगेदर when you are not planning a holiday or buying something expensive, because us waqt emotions already kafi involved rehte hain. Decide maybe few things together, kitna save karna hai, kitna regular expenses ke liye hai, aur kitna guilt free enjoyment ke liye hai. That third wala jo bucket hai is very very important. Budgeting karna basically, jaise for me I always make excel sheets, because agar savings target comfortably meet ho raha hai, bills sorted hai, responsibilities taken care of hai, then jo amount you have manually kept for enjoying life, usse spend karne par har baar court hearing type situation create hi nahi hogi. And similarly, agar koi expensive experience us agreed budget ke bahar hai, then maybe saver gets to have the say ki maybe not right now, let's plan for it. Money conversations mein goal ye nahi hona chahiye ki ek jeete aur dusra maan jaye. Goal should be one person's security and the other person's joy. Dono ke liye budget mein jagah bana leni chahiye. Because you don't want to save so much for tomorrow that you forget to live today, right? And you don't want to enjoy today in a way that makes tomorrow a frightening kind of a situation. Responsible perhaps wo hai jo dono ko thodi thodi si jagah de. I hope this helps. डियर मस्ती दिल से पर मैं आपकी अंतरा यहाँ पर आपके साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: मुझे कई बार डर लगता है उन सवालों से जो आर या पार सिचुएशन के हमसे पूछ लिए जाते हैं। डियर मस्ती दिल से शो, मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ हैं आप। सो अभी जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है उन्होंने पता क्या लिखा है, हाय डियर मस्ती दिल से, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो डिसीजंस है वो दिल से लेने चाहिए या दिमाग से, आप बताएं। भाई ऐसे सवाल छोटे होते हैं पर बहुत डिफिकल्ट साउंड करते हैं, स्पेशली टू मी। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछना चाहोगे तो देखो, जब बात रिश्तों की आ जाती है ना, जब बात अपनों की आ जाती है जिन्हें आप दिमाग से नहीं दिल से बहुत ज्यादा मानते हैं, तो वहां पे आपको दिल से डिसीजन लेनी चाहिए। लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल स्पेस में हैं, कोई आप उन लोगों के साथ है जिनके संग आपका रिश्ता बहुत सालों साल का नहीं है, तो वहां पे थोड़ा नपा तोला सवाल जवाब करना चाहिए और नपे तोले डिसीजन लेने चाहिए, दिमाग से इवेंचुअली वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और मुझे लगता है यही डायरेक्शन आपके लिए भी सही होगा।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 एंड यहाँ पर आपकी अंतरा की बारी वापस से आ चुकी है। चलिए अपने अगले लेटर की तरफ बढ़ते हैं। ये कहते हैं डियर मस्ती, जब हम फैमिली विजिट करते हैं रिलेटिव्स इंसिस्ट करते हैं कि हम उनके घर रहें। आई लव देम बट ऑनेस्टली होटल में रहना मुझे इजियर लगता है, अपना रूटीन प्राइवेसी एंड नोबडी हैज टू होस्ट अस। बट होटल बुक करो तो इमीडिएटली यही आता है कि हम इतने पराए हो गए हैं, अब यहाँ आए हो तो हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। क्या कम्फर्ट चूज करना क्लोजनेस रिजेक्ट करना है? या आई थिंक इट्स मोर विद इन अस, यू नो, कि स्पेशली कि सिर्फ होटल वर्सेस घर का डिसीजन, ये अक्सर हमारे यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन एक डिस्कशन होता है ना। आई कम्प्लीटली गेट यू, आपने होटल बोला नहीं कि सामने वालों को सुनाई देता है कि आपके घर में हमें रहना पसंद नहीं है। व्हाइल यू मे बी सिंपली सेइंग कि मुझे अपनी स्पेस में रहना इजियर लगता है, आई थिंक दोनों साइड यहाँ पे जेन्युइनली समझने लायक है। फॉर मेनी फैमिलीज हमारे घर रुको इज नॉट एकोमोडेशन, इट्स देयर वे ऑफ शोइंग अफेक्शन। सुबह की चाय साथ में, लेट नाइट कॉन्वर्सेशन की क्या खाओगे, एक रूम तैयार करना आपके लिए स्पेशली, एंड दैट्स हाउ सम पीपल एक्सप्रेस क्लोजनेस। सो व्हेन यू चूज अ होटल उन्हें रिजेक्शन फील हो सकता है इवन व्हेन रिजेक्शन इंटेंडेड नहीं है। पर दूसरी तरफ एज वी गेट ओल्डर ट्रैवल का अपना रिदम होता है, राइट? किड्स हो सकते हैं, स्लीप टाइमिंग्स, बाथरूम रूटीन्स, वर्क कॉल्स, या सिंपली यू डोंट वांट टू शट अ डोर एट नाइट एंड बी इन योर ओन स्पेस विदाउट फीलिंग समबडी हैज टू कीप होस्टिंग यू, दैट इज ओके टू। मैं बस एक चीज डिफरेंटली करूंगी, व्हाट आई हैव पर्सनली ऑल्सो इन माई लाइफ आई हैव डन दिस, डोंट ओवर एक्सप्लेन अपनी चॉइस कि जैसे आप परमिशन के लिए पूछ रहे हो, यू कैन नॉर्मली से कि अरे पराए कहाँ पे है, इसीलिए तो आए हैं आपसे मिलने ही, तो बस होटल में रहना हमारे रूटीन के लिए इजियर है, सुबह से शाम तक मतलब आई विल कम एंड मीट यू व्हेनेवर पॉसिबल, प्लीज डोंट वरी, एंड actually do that, spend some time together, maybe eat with them, because closeness ultimately same roof ke niche sone se proof nahi hoti hai. Kabhi elderly parents hai, bahut rarely milte hain, ya staying together itself is meaningful to them, maybe once in a while it's okay, but every visit par apni comfort sacrifice karna hi closeness ka certificate ho, I don't think so, and I don't agree with it as well. In my very very personal opinion, sometimes staying separately can actually make the time together better. So no, comfort choose karna necessarily closeness reject karna nahi hota hai, bas make sure that in choosing your space you don't stop giving the time which I think you should. I hope this makes sense to you and it helps you as well. Sunte rahiye Dear Masti Dil Se. Abhi 7 baje ke us paar yahan par main sirf akeli nahi hungi, hamare saath hamare sankharsh saathi Shridhar jo hai wo bhi join karne wale hain. So don't go anywhere. We'll find out what case does he have today for us.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: हेलो लिसनर्स, हाय अंतरा, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी बैक ऑन मस्त डियर मस्ती दिल से। एक क्वेश्चन था आपके लिए, डू यू रियली हैव some kind of an obsession ki you know you have to buy this or you have to buy that, aisa kuch habit hai kya aapke paas?
2: संघर्ष साथी श्रीधर, बहुत ही मुश्किल सवाल लेकर आए हैं यहाँ पर से भाई। हमें तो मतलब एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट माइसेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी ऐड टू कार्ट करके उसमें रखा हुआ है, बस आई वांट टू बाय दोस थिंग्स। बट वेल, वेलकम एवरीवन, एंड एज यू कैन सी संघर्ष साथी श्रीधर इज ऑलरेडी हियर। श्रीधर, आई कैन ऑलरेडी सेंस समथिंग इज कमिंग आवर वे, सो लेट्स टॉक अबाउट द केस।
1: दिस इज वेरी डिफरेंट, यू नो, जैसे हम लजाड़ा पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, पता नहीं, somehow the urge to keep buying things is always there. And luckily they have something called a cart. तो मेरा भी पड़ा है, 200 आइटम है कार्ट पे, luckily I haven't purchased. तो ऐसा ही एक कॉल आया था एक क्लाइंट पे, इट वॉज अ वीडियो कॉल, वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो वीडियो कॉल, वी वेंट ऑन अ वीडियो एंड उसने अपना मुंह नहीं दिखाया, उसने कैमरा पीछे से दिखाया एंड ही शोड मी अ टेबल। आई कुड फाउंड नथिंग अनयूजुअल, मतलब सब था टेबल पे। आई सेड, यार व्हाट्स अ प्रॉब्लम? ही सेड, भाई तुमने देखा नहीं, ठीक से देखो। बोला, यार क्या देखना है? पेन है? इसे नहीं, पेन्स नहीं है, 400 पेन है, ठीक से देखो। द टेबल वॉज हाफ ऑफ पेन्स, मतलब वो पूरा टेबल में आधा से ज्यादा बस पेन थे, पाउचेस में थे। तो यार 400 odd पेन्स। एंड ही सेड, क्या हुआ? ही सेड, भाई जब भी मैं बाहर जाता हूँ एक पेन खरीद लेता हूँ। यार आई वाज लाइक, वाओ, पेन कलेक्टर हो क्या? इसे नहीं, सब बकवास पेन है, इसे कलेक्शन के लिए कुछ नहीं है, बट आई वॉन्ट गेट रिड ऑफ दिस हैबिट।
2: Wow, wow, this is so unique. I okay. वैसे श्रीधर, मुझे ऐसा लगता है कि I want to know what did you suggest personally also, because मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे, when we go out there so many times we want to kind of and we stop ourselves over there, but there are people maybe who are not able to stop and every time they end up, and that is why I think this guy also approached you. All right, let's come back and get to know ki agar क्या क्या किया होगा, पता नहीं। I am very curious, मुझसे तो ये दो गानों का भी वेट नहीं हो रहा, but then let's go for it and we'll be right back.

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Raaz ki baat batau, meri awaaz kabhi achhi thi hi nahi.
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: जूते, परफ्यूम्स, बैग्स, ओ गॉड भाई, आज श्रीधर ने ना एक ऐसा केस खोल दिया है यहाँ पर। वेल वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। व्हाई वी आर स्माइलिंग सो मच, बिकॉज इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे इट्स सो रिलेटेबल दिस केस इज दैट अभी जो श्रीधर बात कर रहे थे, तो ये जो बंदा है इसको लगता है कि जब भी वो बाहर जाता है वो पेन खरीदता ही खरीदता है, उसको एक आदत सी पड़ गई है। एंड ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस ऑब्सेशन विद पेन, एंड इट्स नॉट दैट अ कलेक्टर्स पेन, इट्स लाइक एनी रैंडम पेन, शायद वो काम भी नहीं करता होगा, बट इट्स हिज थिंग दैट बाहर गए हैं तो पेन लेकर ही वापस आना है। सो श्रीधर क्या क्या किया?
2: This is again पहले सुना तो I could find it relatable because मेरे पास at one time I had 200 over pens, सब बकवास पेन थे, maybe one or two were writing properly but the remaining 80% of them were crap, I just don't know कहीं भी, so I was like that, कभी कभी sometimes these cases that come are very relatable, so this one I had the perfect solution for him, मैंने पहले ही पूछ लिया भाई तू पेन किस मूड पे खरीदता है, तो यू सेड नहीं, आई नेवर पेड अटेंशन टू दैट, बट जब भी जाता हूँ देन आई जस्ट स्टैंड एट द स्टेशनरी शॉप देयर, एंड इंडिया में तो यू नो देयर आर सो मेनी राइट, तो आई जस्ट स्टैंड देयर, मैं देखता रहता हूँ, बोला नहीं नहीं नहीं, आई टोल्ड हिम स्पेसिफिकली ट्रेस बैक एंड ये बोलो कि व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम, उसने बोला यार थोड़ा रेस्टलेस था या सम काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट वो इनकम्प्लीट यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग दैट ही यूज्ड टू हैव, एंड आई सेड कभी बोर लगता था या यू फीलिंग रेस्टलेस, बिकॉज दैट वाज एग्जैक्टली द फीलिंग आई यूज्ड टू हैव, दिस वाज अ वेरी क्लियर कट केस, आई टोल्ड हिम डू यू बाय व्हेन यू आर फीलिंग बोर्ड, व्हेन यू डिड नॉट नो व्हाट टू डू, व्हेन यू आर फाइंडिंग वेरी रेस्टलेस काइंड ऑफ सिचुएशन एट होम की ऑफिस में कि कहीं पे, एंड ही सेड या आई थिंक दैट वाज द रीजन, root cause there was restlessness which is very similar to what used to happen to me kyunki bachpan mein in my case my mom would always tell me that my handwriting is very bad and I used to keep changing the grip of my hand to write legibly and things like that, so kabhi kabhi certain pens would feel good and I felt the pen changing makes you write better, so isliye this habit got drilled into me, so uske hisab mein he did not share what went through but he said yes he would always buy a pen whenever he felt restless,
1: okay,
2: so that was important for me to know.
1: So and eventually you suggested him to do?
2: No, first thing I told him is it's a phase, nothing wrong with him purchasing, so we had to work on what to do when he's restless, so bola agli baar stationery dukan mat jao, kahin coffee shop jao aur coffee pilo, so at least you don't keep collecting this, and I told just go 400 pens you have, I say har ek pen ko nikalo dekho kya kaam kar raha hai, seedha jao sab pen le lo aur kisi orphanage pe dal do, isme ek ajeeb sa sukoon milta hai tumhe ki you are helping somebody use pens and write and what not, and keep maybe 4 or 5 with you, and usne pucha hey will this habit go away, I say nahi phir se shuru hoga but it will not be 400 this time, it will come to maybe 100 pens, then gradually it will just go.
1: I know. So, ये बात थोड़ी सी एकदम ही बहुत ही रिलेटेबल लेवल पे आई थिंक मेरे और संघर्ष साथी श्रीधर के उसमें भी चली गई, बट इफ यू आर ऑल्सो इन टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग आई होप दिस हेल्प्स हूएवर इज लिसनिंग, कभी भी आपको ऐसा लगे दैट यू वांट टू गेट इन टच विद अस, यू फील वेरी मच रिलेटेबल एंड क्लोज टू अस दो वी आर स्ट्रेंजर्स ओवर हियर, प्लीज फील फ्री टू राइट 9151893, दैट्स आवर नंबर, थैंक यू श्रीधर, आपका और हमारा संघर्ष साथी और डियर मस्ती दिल से का हमारा ये एसोसिएशन यू ही बना रहे।
2: Yeah, I'm really happy that this is reaching out to people and बहुत सारे लोग are getting benefited by this. Good, great work.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।

वेलकम बैक डियर मस्ती दिल से, आप सुन रहे हो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। वेल दैट वाज हमारा संघर्ष साथी श्रीधर अब से कुछ ही देर पहले। चलिए फिलहाल यहाँ पर मेरी अगली चिट्ठी की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। ये कहती है, डियर मस्ती, मैं हूँ बाय द वे आपकी अंतरा यहाँ पर आपके साथ। डियर मस्ती, मेरी एक फ्रेंड ऑलमोस्ट हर चीज का प्राइस पूछ लेती है। बैग कितने का है, इसमें कितना स्पेंड किया, हमारे बच्चों की ट्यूशन क्लासेस में कितना कितना लगा, इवन की गिफ्ट्स का भी प्राइस वो पूछ लेती है। आई डोंट थिंक शी इज जजिंग मी, शी इज नेचुरली क्यूरियस एंड अपने एक्सपेंसेस के बारे में ओपनली वो बात भी करती है, बट मुझे मनी रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े पर्सनल लगते हैं। मनी देंगे आई वुड रादर नॉट से, बोलना मुझे एक्चुअल प्राइस बताने से ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। जब कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है बट आपके लिए टू पर्सनल है तो बिना रूड लगे आंसर कैसे अवॉइड करें? आई गेट दिस इन अ वे, ऑल्सो इट डिपेंड्स दैट ये जिस इंसान के बारे में आप बोल रही हैं या रहे हैं वो आपके कितना क्लोज है ना, वो उस पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज क्वेश्चन से ज्यादा ऑकवर्ड आंसर ना देना लगता है। एंड आई थिंक सिंपल, आई थिंक हमको ये चीज याद रखनी चाहिए, समवन बीइंग कंफर्टेबल asking doesn't mean you have to be comfortable answering as well. It's a very practical thing I'm talking about. aapke dost ke liye money perhaps personal topic hai hi nahi, wo apne expenses openly share karti hai, to naturally unhe lagta hai ki everybody should be equally comfortable. It's quite natural kabhi kabhi to think like that. So I wouldn't assume that she's nosy ya fir she's judging you, but aapko agar answer nahi karna hai to mat kijiye. और हर बार सॉरी आई डोंट डिस्कस फाइनेंसेस बोल के सीरियस अनाउंसमेंट करना भी जरूरी नहीं है। समटाइम्स यू कैन जस्ट सिंपली कीप इट लाइट कि यार वो मत पूछ बस पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। यू सी जस्ट सेइंग हॉलिडे का पूछा, बजट थोड़ा हिल गया है बट इट वॉज टोटली वर्थ द एक्सपीरियंस। एक्सपेंसिव तो है बट या आई एंजॉयड इट, जस्ट इधर उधर से जैसे बातें करके जो है आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सो यू आर आंसरिंग द कॉन्वर्सेशन विदाउट आंसरिंग इन नंबर्स। इफ शी स्टिल सेज और ही स्टिल सेज कि हाँ बट कितना, देन मे बी यार एग्जैक्ट नंबर शेयर करने में थोड़ी सी वियर्ड हूँ, प्लीज डोंट माइंड, आई एम श्योर यू विल नॉट। I think that sorts that out. कोई बहुत ज़्यादा लंबा explanation नहीं है, and because जितना हम एक अपनी preference justify करते हैं ना, उतना हमें खुद लगने लगता है कि जैसे हम कुछ गलत, खुद ही कुछ गलत कर रहे हैं, जब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। Privacy का मतलब सिर्फ secrets तो नहीं होता, right? We all have different definitions of what feel personal. किसी के लिए salary normal conversation है, किसी के लिए age, किसी के लिए relationships, और किसी के लिए price of a bag. So don't judge her for asking and don't judge yourself for not answering. आप अपनी अपनी जगह पे perfectly okay हैं. I think this should help out. But this is what I think about the situation. Radio Masti 24/7 पर मैं अंतरा आपके साथ.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: With that, आज के डियर मस्ती दिल से का रैप अप करने का टाइम आ चुका है। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर वापस आ गई है। एंड यू नो आज के लेटर्स डिफरेंट थे एज यूजुअल एज एवरी सिंगल एपिसोड। सिचुएशंस अलग अलग थी बट समवेयर द कॉमन थ्रेड इन दैट वाज दैट हर चीज को ना पर्सनल लेना जरूरी नहीं है बट हर चीज को टॉलरेट करना भी जरूरी नहीं है। कभी कोई पर्सन प्रोफेशनली आपका पेशेंस टेंस करता है, कोई कभी आप रियलाइज करते हैं आई डोंट नीड टू चेंज दिस पर्सन, आई जस्ट नीड टू चेंज हाउ आई डील विद देम। कभी फैमिली का प्यार कहता है हमारे घर रुको और आपका कंफर्ट कहता है आई लव यू बट मुझे होटल का रूम दे दो प्लीज। एंड दैट्स लाइफ राइट। हम कॉन्स्टेंटली फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ क्लियरली बोलना है, कहाँ किसी की इंटेंशन समझनी है और कहाँ अपनी नीड को भी इम्पोर्टेंस देनी है। और शायद मैच्योरिटी का मतलब हर सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करना नहीं है। समटाइम्स मैच्योरिटी इज सिंपली बीइंग एबल टू से आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी without anger, without guilt, without making the other person wrong. Because relationships में हर difference को conflict बनाना जरूरी नहीं है। दो लोग अलग हो सकते हैं और फिर भी एक दूसरे को respect कर सकते हैं। So well, अगर कोई situation आपका patience test करे इस हफ्ते आने वाले दिनों में, पहले ये decide कीजिए क्या मुझे इसे solve करना है, communicate करना है या सिर्फ simply थोड़ा सा different तरीके से handle करना है। हर चीज को दिल पे नहीं लेते लेकिन जो दिल में है उसे समझना बहुत जरूरी है। मैं अंतरा ऑन बिहाफ ऑफ नुपुर एंड हमारे संघर्ष साथी श्रीधर आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ एंड वापस से मिलेंगे अगले एपिसोड में अपने डियर मस्ती दिल से के कुछ और आपके लेटर्स, आपकी फीलिंग्स और हमारे कॉन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती 24/7।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: कभी दहलीज पर दिए जलाना, कभी जलते दियों को बुझाना, मेरी याद यूं भी तड़पाएगी, तुम बार बार दहलीज पर ना आना। हाँ, शायद किसी को जब बहुत याद किया जाता है तो उन लम्हों में जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि लम्हे वहीं थम गए हैं, वक्त है कि गुजरता ही नहीं। लेकिन जब मैं आ जाता हूँ तो वक्त कहाँ उड़नछू हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। बहुत सारी विशेष के साथ आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त समर आपके अपने फेवरेट शो लेजेंड्स के साथ एक बार फिर से, जहाँ बातें पूरी फिल्मी होती हैं। तो जी, महफिल जमा लेते हैं और बातों का तड़का डालकर मस्त मस्त शो की चाट तैयार करते हैं। और आज की हमारी शो चाट में आज है भेलपुरी। जी, चरपरी, खट्टी मीठी और थोड़ी तीखी। आप कहेंगे, यार समर को क्या हुआ, चाट बाजार कैसे बन गया? सिंगापुर जिंदगी चाट ही तो है, सारे टेस्ट्स का मिक्सचर है। वैसे आज लेजेंड्स पर हम जिनकी बात करने वाले हैं वो भी ना पूरी चाट हैं। ये हैं आशा पारेख, है ना? इनकी आंखों के इशारे, इनकी खिलखिलाती हंसी, मीठी आवाज और डांस, भाई वाह। तो जी, सिंगापुर, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और हो जाते हैं आशा जी के साथ। आप सुनते रहिए लेजेंड्स, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ समर आपके साथ, स्टे कनेक्टेड।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti partner event.
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: बच्चों बताओ, 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे आता है?
7: सारी दुनिया को मालूम है, गांधी जी का।
6: बिल्कुल सही जवाब। लेकिन आज के शो में हम जिस लेजेंड को लेकर आए हैं, उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को याद है। हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूं समर आपके साथ। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, विच इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। और आज मैं बात कर रहा हूं लेजेंड्स पर, लिविंग लेजेंड आशा पारेख की। हाँ, वही आशा जी जो सजन को जब पुकारती हैं तो सावन झूम कर आ जाता है और कभी बदरा जा जाते हैं। बॉम्बे की एक मिडिल क्लास फैमिली में 2 अक्टूबर 1942 में जन्मी आशा पारेख के पिता प्राणलाल हिंदू और माता सुधा मुस्लिम थी। ये अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और शायद इसीलिए उनकी बहुत ही प्यार और दुलार के साथ परवरिश की गई। आशा अभी बहुत ही छोटी थी, लेकिन उन्होंने एक ख्वाब बुन लिया था। वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि लोगों का इलाज कर सकें। पढ़ने में अच्छी थी और डांसिंग में भी खासी दिलचस्पी थी। एक रोज स्कूल से लौट रही थी कि रोड पर एक्सीडेंट देखा। सड़क पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। बस इतना देखना था कि आशा जी के हाथ पैर कांप गए और डॉक्टर बनने का इरादा उसी वक्त छोड़ दिया। इनके दिल में खून का डर जो बैठ गया था। अब आगे क्या हुआ? हाँ हाँ बताऊंगा, अभी तो बात शुरू हुई है, दास्तान पूरी बाकी है मेरे दोस्त। आप सुनते रहिए समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहाँ पर चल रहा है आशा पारेख की जिंदगी का सफर। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा। It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: आप सुन रहे हैं Legends फिर से समर के साथ।
3: ये गई वो गई सपनों में हो गई, आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे बालमा। हाय तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन। कितना प्यारा सा गाना नहीं है, और इस गाने को किस पर फिल्माया है? ऑफ कोर्स आशा जी पर, जो आज की हमारी लेजेंड है। वेलकम बैक, मैं हूँ समर आपके साथ, और आज आशा पारेख जी के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे आशा जी की आंखें कितनी खूबसूरत है ना, बड़ी बड़ी, और उनके डांस का तो मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैं यानी समर, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आशा जी को बचपन से ही डांस से बड़ा लगाव था, और उनकी मम्मी को भी, और शायद इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र में ही आशा जी को उन्होंने क्लासिकल डांस की तरफ मोड़ दिया और मुकम्मल तौर पर डांस सिखाना शुरू कर दिया। बड़ी छोटी सी उम्र में इन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया था, और वहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत ट्विस्ट हुआ। आशा जी एक प्रोग्राम में परफॉर्म कर रही थी, खूबसूरत तो वो पहले से ही दिखती थी, साथ ही बड़े ही माहिर अंदाज से स्टेज पर वो डांस करती थी। इसी प्रोग्राम में मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिमल दा बिमल रॉय भी मौजूद थे। उन्होंने आशा जी को वहाँ देखा और कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है, डांसिंग पार्ट ही है, करोगी? छोटी सी आशा सुनकर खुश हो गई और हामी भर दी। जानते हैं इस वक्त आशा की उम्र क्या थी? महज 10 साल। और इस फिल्म का नाम था माँ। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में भी उनके डांस को काफी पसंद किया गया, और पता है इसके बाद ही एक और फिल्म में उन्हें कास्ट कर लिया गया। कौन सी? अरे बताऊंगा भाई, पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और हो जाए, फिर बातें आशा जी की और भी करेंगे। ओके, समर है आपके साथ, आप सुन रहे हैं सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो Mazi 24/7 लाइव, और यहाँ चल रहा है लेजेंड्स। आज बात हो रही है आशा पारेख की।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti Partner event.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हीरो बनना तो बड़ा आसान है, बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डांस भी आता हो तो अच्छा है। हीरो तो यूं ही बन जाते हैं चुटकियों में, यूं अक्सर लोग ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री में किसी मकाम पर हैं, वो जानते हैं कि यहाँ अपने कदम जमाना कितना मुश्किल का काम है। वेलकम बैक, समर लौट आया है लेकर लेजेंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं आशा पारेख की। हाँ, तो जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि बेबी आशा अब फिल्म की तरफ बढ़ने लगी थी और उन्हें मिल गई दूसरी फिल्म बाप बेटी। 1954 में ये फिल्म आई और इस फिल्म के सभी गाने लता जी ने गाए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह से नकार दी गई, फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, लेकिन आशा जी का सफर शुरू हो चुका था। अब वो मुख्तलिफ फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स करने लगी थी, लेकिन असल मंजिल अभी दूर थी। बेबी आशा 16 बरस की हो चुकी थी और एक दिन विजय भट्ट ने इन्हें अप्रोच किया और कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें आशा को एज अ लीड एक्ट्रेस लेना चाहते हैं। आशा को ऑफर अच्छा लगा और उन्होंने हाँ कह दिया। ये फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। अभी शूटिंग के 10 दिन ही गुजरे थे कि विजय भट्ट ने आशा को बुलाया और कहा कि सॉरी, अब तुम फिल्म में नहीं हो। वो क्या है ना कि तुम स्टार मटेरियल नहीं हो। बताइए, जो आने वाले वक्त की स्टार थी, जिनके साथ सभी सुपरस्टार्स काम करना चाहते थे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन आशा इससे टूटी नहीं, नहीं उनका हौसला खत्म हुआ। वो घर लौट आई और सिर्फ इस बात के 8 दिन बाद नासिर हुसैन की एंट्री हुई उनकी जिंदगी में। हाँ, वही नासिर हुसैन जो आमिर खान के चचा हैं, और आकर उन्होंने कहा, आशा दिल दे के देखो। हाँ, यही कहा। क्यों कहा बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद समर यही है लेजेंड्स के साथ। समर लेजेंड्स वाला आपका इंतजार कर रहा है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो। आप सुन रहे हैं, इन खूबसूरत नगमों में डूबकर वापस आइए। इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा मैं।

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का
3: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
4: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
5: टाइम टू रेज द बार। रम्मा
6: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
7: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
8: दिल देखे देखो, दिल देखे देखो, दिल देखे देखो जी, ओ दिल लेने वालों, ओ दिल देना सीखो जी। हाँ, दिल लेने वालों को दिल देना भी आना चाहिए। हाय शम्मी जी मस्ती के साथ ड्रम बजाते हुए और झूम झूम के गाते हुए नजर आ जाते हैं, जैसे आप ये गाना गाते हैं। और साथ में नजर आता है वो पुरानी फिल्म्स का पेटेंट डांसिंग स्टाइल। डांस फ्लोर के दोनों साइड से मेल फीमेल डांसर्स हौले हौले आते हैं, थमकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, और फिर ट्विस्ट करते हैं या रॉक एंड रोल करते हैं। आपने भी गाना जरूर देखा होगा। वेलकम बैक, मैं हूँ समर आपके साथ, और ये गाना दिखा रहा था आपको मैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। हाँ, दिखा रहा था, दिल की आंख से दिखा रहा था, आप महसूस कर रहे होंगे जी। इसी फिल्म दिल देखे देखो का परवाना लेकर नासिर हुसैन पहुंचे थे आशा जी के पास, और आशा जी जो 8 दिन पहले ही एक फिल्म से निकाल दी गई थी, अब इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उन्हें लिया जा रहा था। आपको पता है आशा जी ने क्या कहा? ऑफ कोर्स आशा जी ने हाँ ही कहा। तभी तो फिल्म बनी, फिल्म रिलीज हुई जी। आशा जी ने हामी भर दी और उन्हें उस वक्त के स्टार शम्मी जी के साथ एक बड़ी ही प्यारी सी फिल्म में पेश किया गया। आशा जी कहती हैं कि शम्मी जी जो इस वक्त जाने माने कलाकार थे, मैं उनके साथ थी, ये बात ही मुझे अंदर तक खुश कर रही थी। एक दिन शूटिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन मेकअप आर्टिस्ट आए नहीं थे। तब आशा जी कहती हैं कि शम्मी जी की वाइफ ने मुझे बच्चों की तरह बिठाया और मेरा मेकअप किया। उनको याद करते हुए आशा जी कहती हैं कि वो बहुत अच्छी औरत थी। अरे हाँ, जब दिल देखे देखो रिलीज हुई थी तो फिल्म की बड़ी तारीफ हुई। इसके गाने, इसके सॉन्ग्स, स्टोरी, एक्टिंग लोगों ने बहुत पसंद की, और खास तौर पर इस नई लड़की की भी बड़ी तारीफ हुई। और तो और, क्योंकि इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक और सितारा दे दिया था जो अपनी चमक बिखेरने के लिए बेकरार था। अरे हाँ, इस फिल्म के बाद शम्मी जी और आशा जी की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और नासिर हुसैन साहब के साथ एक टीम बन गई। अरे जी, ये साथ तो अभी दूर तक का था। आशा जी ने नासिर साहब के साथ तकरीबन 7 फिल्मों में काम किया और सभी अमेजिंग। फिलहाल अमेजिंग गाने तो इस म्यूजिकल ब्रेक में भी आ रहे हैं, तो चलिए मिलकर एंजॉय कर लेते हैं इन गानों को। आप सुनते रहिए लेजेंड्स, समर लेजेंड्स वाला के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: जब प्यार किसी से होता है, बताइए किसकी फिल्म है ये? मैं समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मजरी 24/7 लाइव पर। आप कहेंगे सल्लू भाई की फिल्म है। अरे हाँ माना, लेकिन इस टाइटल की एक फिल्म 1961 में आ चुकी थी और उसकी एक्ट्रेस थी आशा जी, यानी हमारी आज की लेजेंड आशा पारेख, और उनके साथ थे हमारे हर दिल अजीज एवरग्रीन एक्टर देवानंद साहब। मुझे इस फिल्म का एक गाना इंतहाई पसंद है। ये फिल्म भी थी आशा जी के साथ नासिर हुसैन की। नासिर हुसैन की फिल्म्स में एक चीज जो अब कॉमन हो चली थी वो थी आशा जी, आशा पारेख। दो बेहतरीन म्यूजिक और तीन शानदार स्टोरी थीम, और इन्हीं के साथ आशा जी की इमेज भी टॉम बॉय, स्टाइलिश और बबली सी बन गई थी इन फिल्म्स में। फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां, ये फिल्में काबिले जिक्र हैं। वहीं 1984 में फिल्म मंजिल मंजिल में एक कैमियो में आशा जी ने काम किया, और अब आशा जी को बड़े बड़े बैनर्स की फिल्म्स मिल रही थी। उनके स्टाइल स्टेटमेंट से लोग प्रभावित हो रहे थे, लड़कियां उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करने लगी थी, उनकी तरह से साड़ियां पहनने का फैशन शुरू हो चुका था। शम्मी जी के साथ साथ पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, मनोज कुमार, जॉय मुखर्जी, धर्मेंद्र, शशि कपूर, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार के साथ भी उन्होंने कई बड़ी फिल्म्स में काम किया और इतनी शोहरत हासिल कर ली कि वो एक सितारा बन गई। और ये वक्त अभी 1970 तक का ही था, अभी तो कई फिल्में आनी बाकी थी। अच्छा हाँ, एक सुपरस्टार थे जिनके साथ आशा जी ने एक भी फिल्म नहीं की, आप जानते हैं कौन थे वो? नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक और ले लेते हैं। आप इसे जल्दी से सुनकर वापस आइए, मैं यहीं आपका मंतजर हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। समर लेजेंड्स वाला है मेरा नाम, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो 24/7 लाइव पर। दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो, स्टे कनेक्टेड।
2: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a musty partner event.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: लीजिए एक बार फिर से हाजिर है समर लेजेंड्स वाला और एक बार फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं ले आया हूँ आशा पारेख की कहानी। मैंने जिक्र किया 1970 की फिल्म तक का। अभी तक आशा जी जो कि दिल बहलाने के रोल कर रही थी, लेकिन फिल्म दो बदन के लिए कास्ट किया और इस फिल्म ने आशा जी की संजीदा एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया और उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई थी। चिराग, मैं तुलसी तेरे आंगन की, वहीं शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का और कटी पतंग ने आशा जी को हर दिल की आवाज बना दिया था। फिल्म्स के गीत, उनकी एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल, मेकअप, उनका देखने का अंदाज, उनकी चाल, गांव की गोरी वाले कैरेक्टर से लेकर शहर की लड़की तक हर रोल में वो परफेक्ट फिट हो रही थी। कटी पतंग तो उनके करियर का सूरज हो गई थी जो बहुत रोशन थी। पहले फिल्म कटी पतंग में शर्मिला जी को कास्ट किया गया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बस इसी वजह से शक्तिदा ने आशा जी को साइन किया और इसी फिल्म के लिए आशा जी को अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इस दौर में ही आशा जी को जुबली गर्ल का खिताब भी मिला, क्योंकि उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली तो जरूर मनाती थी, वहीं उनके कई खास डांस स्टेप्स तो लोगों ने चुरा लिए थे और उनकी मिमिक्री भी खूब की जाती थी। ये उनकी शोहरत का ही नतीजा था। आशा पारेख ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि कई गुजराती और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और पंजाबी फिल्म में तो वो दारा सिंह के साथ नजर आई थी। वाह, सोचिए इतनी सी आशा जी और दारा सिंह। अरे हाँ, एक और बात, आशा जी ने शादी नहीं की। क्यों? बताऊंगा ना, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और हो जाए उसके बाद बताऊंगा। और हाँ, साथ ही 3 बेस्ट फिल्म्स का भी जिक्र करूंगा, तो जल्दी जाइएगा। समर लेजेंड्स वाला आपका इंतजार कर रहा है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सिंगापुर सुनते रहिए।
6: गोरी भैया

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, समर लेजेंड्स वाला एक बार फिर से लौट आया है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सिंगापुर में आपको बता रहा था कि आशा जी ने कभी शादी नहीं की। आशा जी को कोई बहुत पसंद था और उन्हें किसी से मोहब्बत भी हुई थी, लेकिन जाने क्यों बात शादी तक नहीं बढ़ी और मोहब्बत यूं ही खत्म हो गई। कई साल तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली आशा जी के दिल पर जाने क्यों किसी ने दस्तक ही नहीं दी। शायद किसी ने दस्तक भी दी हो, लेकिन आशा जी ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। नासिर हुसैन साहब के साथ भी आशा जी का नाम जुड़ा, लेकिन नासिर हुसैन जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थे, वो अपने उस रिश्ते को तोड़कर आशा जी के साथ नहीं आए और शायद इसीलिए आज तक आशा जी ने शादी नहीं की। आशा जी कहते हैं कि जिंदगी में तन्हा रहना कोई बुरी बात नहीं है, बस आपके पास जिंदगी के लिए एक अच्छा नजरिया होना चाहिए, दोस्त होने चाहिए। आशा जी ने अपने फिल्मी करियर में 90 फिल्म्स में काम किया और बेहद सलाहियत के साथ, लेकिन उनकी अगर 3 बेस्ट फिल्म्स की बात की जाए तो उन्हें चुनने में बड़ी मेहनत लगी मुझे, लेकिन समर मेहनत से कहां डरता है हा? तो चलिए एक मंत्र पढ़ते हैं और ढूंढते हैं उनकी इन 3 फिल्म्स को। गिलगिलिया खाऊं छू ओम फट, क्या पहली फिल्म मेरे हिसाब से निकली है कटी पतंग, दूसरी फिल्म कारवां और तीसरी फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये तीनों ही फिल्म्स मुझे तो बेहद पसंद हैं और तीनों का जॉनर भी बिल्कुल अलग तरह का है। वैसे अगर आशा पारेख की फिल्मों की बात की जाए तो उनकी ब्यूटीफुल फिल्म्स में घराना, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, आया सावन झूम के, लव इन टोक्यो, आए दिन बहार के, उपकार, महल, आन मिलो सजना, पगला कहीं का, चिराग, कालिया, बुलंदी, ये भी काबिले जिक्र हैं। अच्छा, एक वक्त के बाद उन्होंने लीड रोल्स करना बंद कर दिया और हीरोइन से हटकर माँ और भाभी के रोल किए और उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया, लेकिन फिल्मी दुनिया छोड़ी नहीं बल्कि अब अपने हाथों में फिल्मों की कैंची ले ली। हाँ सच्ची, कौन सी कैंची बताऊंगा, लेकिन पहले ये कुछ कहानी और हो जाए। आप सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर लेजेंड्स वाला को। आज कहानी सुना रहा हूँ मैं आशा पारेख की। स्टे कनेक्टेड।

तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too.

0: $25 onwards almost sold out. But you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti Partner event.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। मैं हूं समर लेजेंड्स वाला और आज कहानी आशा पारेख की। धर्मपाजी के साथ आशा जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। दोनों की फिल्म्स और सॉन्ग्स लोगों की जुबान पर चढ़े हुए थे, लेकिन आशा जी कहती हैं कि मेरी हर हीरो हीरोइन और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ खूब बनती थी, और अब जबकि मैं फिल्मों से दूर हो चुकी हूं, तो अब मेरी एक सो कॉल्ड गर्ल्स गैंग है, हेलेन, वहीदा रहमान, शम्मी और आशा जी। ये सब मिलकर खूब पार्टी करती हैं, घूमती हैं और चैरिटी भी करती हैं। बचपन में आशा जी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की आशा पारेख हॉस्पिटल खोलकर। अन्हा जाने से पहले मैं बता रहा था कि कैंची उनके हाथ में आ गई। 1994 से 2000 तक आशा पारेख सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही। वहीं एक ड्रामा एकेडमी उन्होंने खोली और साथ ही आशा जी ने अपना एक टीवी सीरियल प्रोडक्शन हाउस भी खोला, जिसने कई सीरियल्स बनाए जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया। आशा जी को मिले अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले, जिनमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड पद्मश्री मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, लिविंग लेजेंड्स अवार्ड उन्हें मिला, गुजरात फिल्म अवार्ड, भीष्म अवार्ड, अरे बाप रे, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन जिस स्टेचर की वो कलाकार हैं, जिस खत की वो कलाकार हैं, उसके हिसाब से ये अवार्ड्स कम ही हैं। बहरहाल ये बात जानने वाली है कि उनके काम में कभी कोई कमी नहीं रही और उनके गाने माशाल्लाह जबरदस्त हिट होते थे। तो कुछ गाने हो जाएं, आप सुनते रहिए लेजेंड्स सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। ये गाने सुनिए और वापस आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं हूँ समर लेजेंड्स वाला, स्टे कनेक्टेड।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आपको पता है आशा जी की एक फिल्म आई थी राखी और हथकड़ी 1972 में, और फिल्म से लोगों को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि अब तक जो भी फिल्में रिलीज हो रही थी वो ज्यादातर जुबली मना रही थी, हिट हो रही थी। लेकिन ये फिल्म रिलीज के पांचवे दिन ही सिनेमाघरों से उतर गई और इस वक्त की ये सबसे बड़ी फ्लॉप थी। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, जहां बातें पूरी फिल्मी है। रेडियो मसी 24/7 लाइव है, ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने सभी के साथ काम किया लेकिन आशा जी के साथ काम नहीं कर पाया मैं। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी आशा पारेख के एक बार संबंध खराब हो गए थे और जब इन दोनों की बातचीत बंद हो गई थी तो उन्होंने पहल करके उस बातचीत को फिर से शुरू किया। अपने दौर की हाईएस्ट पेड हीरोइन रही आशा जी, बावजूद इसके आशा जी में कभी गुरूर नहीं आया। विजय आनंद जो कि अपने जमाने के बड़े डायरेक्टर रहे, वो कहते थे कि मुझे आशा का शरारती अंदाज बड़ा पसंद है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारा आज का शो और गाने पसंद जरूर आए होंगे। वैसे एक बात है, लेजेंड्स की बातें करते करते मैं भी बहुत कुछ जान गया हूँ, वो भी जिनसे मैं अभी तक अनजान था। शुरू हो गई मेरी हीरो बनती। लेकिन आप गानों को एंजॉय करते रहिए और मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराहट टैक्स फ्री है। फिर से लौट कर आऊंगा एक और शो के साथ, तब तक सुनते रहिए लेजेंड्स। अभी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे चलते चलते। नमस्कार, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। फिर मिलते हैं।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल। जोश में रहो।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
1: रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो आपके

0: नहीं पियोगे?
1: मैं नहीं पीता।
0: सिर्फ एक घूंट?
1: सिर्फ एक।
0: मेरी खातिर।

कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं।

दो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: मीना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना?
4: ये भी कोई पूछने की बात है?
3: तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो।

0: नीचा।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
2: चिनोय सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू सर।

0: मन अकेली क्यों खड़ी हो? आओ, हमारा इंतजार हो रहा है, तो इधर तो आओ। कहाँ चाहिए जाने मन, मेरे पास तो आओ।
1: जलील, तुझे मालूम नहीं शरीफ लड़कियों से कैसे बात की जाती?

0: यार नाटक लेकर, नचना यार नचना।
1: अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई चा भाई नचना ही पैदा।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

with the message, eh?

0: लव का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
1: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा, जा उसके लिए 2 रुपए का गुलाब ला।

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: और मी नहीं चलेगा। वैम बैम थैंक यू मैम नहीं चलेगा। वन नाइट स्टैंड नहीं चलेगा।
1: लिसन मैडम, तो क्या चलेगा?

कमर में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना। मैं कहती यमला पगला दीवाना।

0: फनी है मैन।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

अपनी पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: ऐसा क्या हो गया है दुनिया में कि हर कोई ना मी टाइम मांग रहा है, फैमिली टाइम नहीं। बिकॉज जब से ये डिमांड बढ़ी है ना प्राइवेसी की, मी टाइम की, सिंगल सिंगल सोलो सोलो परफॉर्मेंस की, तब से शायद मूवीज की भी सोलो स्क्रिप्ट्स चल रही हैं। बहुत वक्त निकल जाता है, कोई ऐसी मूवी नहीं आती कि हम पूरी फैमिली के साथ जा सके। मतलब सबकी कॉमन चॉइसेस, कॉमन तरीके, एक कॉमन कॉन्टेंट निकल कर आए, या फिर उस मूवी से एक टेक अवे निकल कर आए कि फैमिली का साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक्चुअली कल की बात है, लेट इवनिंग में एक पुरानी मूवी देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो पुरानी मूवी का चार्म है ना, ये अब नई मूवीज में निकल कर भी नहीं आता। मतलब अब जो नई मूवीज की शेल्फ लाइफ है, एक दो या तीन बार है ना, पुरानी मूवीज अगर हम लूप में भी देख लेते थे ना, ओए होए मजा ही आ जाता था, है ना। एनीवेज, लूप में सुनने वाले वो गाने जो रेडियो मस्ती पर आपके फेवरेट चलते हैं, वो चलते रहेंगे डेफिनेटली। मैं आरजे नुपुर वंस अगेन आपकी सुबह की शुरुआत करने के लिए आ चुकी है मस्ती मॉर्निंग शो पर, सो डोंट गो एनीवेयर। आती हूँ कुछ लॉन्ग लास्टिंग बातें लेकर, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalon India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalonindia.com.
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
0: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: अच्छा, कोई ना कोई इंसान तो होगा ना जिसकी डांट खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, मन भर जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ तो गलत किया था तभी तो इतनी डांट पड़ी। लेकिन आप कई बार नाराज भी हो जाते हैं कि यार ये कौन होता है मुझे डांटने वाला। तो ऐसी चीजों में ना ईगो हर्ट हो जाता है, बट समटाइम्स हमें अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। देखो, हम सब तो अपनी गलती एक पॉइंट पे आके एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर्स की झलक दिखाने वाले पेपराजी फोटोग्राफर्स अपनी आदतों से बाज नहीं आते। वो सेलिब्रिटीज के बैक साइड की वीडियोस लेते हैं, फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि सुनो सुनो सुनो और बताओ ये कौन सा सेलिब्रिटी है। तो इस बात पे नाराज बहुत सारे सेलेब्स हो चुके हैं और इस बार तो नीतू कपूर जी ने अच्छी खासी फटकार लगाई है सारे पेपराजी फोटोग्राफर्स को। तो धीरे धीरे से सेलिब्रिटीज बहुत अलर्ट मोड पे चल रहे हैं, बिकॉज साल खत्म होने को आ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें इंतजाम करना है, तो अलर्ट मोड तो चालू करना ही पड़ेगा। चलिए, वो सारी बातें भी हम साथ में ही करेंगे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड बॉलीवुड स्टाइल एनीवेयर एनीटाइम।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुन टकाट।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। देखो दिवाली आने वाली है, लेकिन घर की याद तो आएगी, पर उसके साथ साथ मिठाइयों की भी तो याद आ रही है। ठीक है, टिल दिवाली आप डाइटिंग शाइटिंग कर लो ताकि उस दिन अच्छे से एंजॉय कर पाओ, लेकिन दिवाली की इस लेगेसी को कौन बरकरार रखता है कि सिंगापुर में आपको इंडिया की याद ना आए, ऑथेंटिक टेस्ट मिल जाए। सो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी आपके सामने है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ दिवाली 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, इनके स्वीट कलेक्शन हमेशा से बहुत ज्यादा बेहतरीन रहे हैं, और इस बार तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार। मतलब ट्रॉपिकल सनशाइन कलेक्शन से लेकर ग्राम एंड गुड डिलाइट से लेकर मैंगो सरप्राइजेस से लेकर मिल्क केक से लेकर डेट एंड नट बर्फी इन्होंने स्पेशली आपके लिए निकाली है। सो आप सेलिब्रेशन के लिए, गिफ्टिंग के लिए, इवन आप प्री बुकिंग करना चाहते हैं अपने स्टाफ के लिए, घर वालों के लिए, तो आप ये सारी चीजें पिक कर सकते हैं। सेलिब्रेशन बॉक्स, रॉयल सेवरी ट्रीट्स, रॉयल फेस्टिव बॉक्स, ट्रेजर शुगर एंड स्पाइस बॉक्स, अलग अलग कैटेगरी में, मतलब $85 ऑनवर्ड्स, $78 ऑनवर्ड, $117 ऑनवर्ड्स, $158 ऑनवर्ड्स, हर तरह का कलेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड प्राइस ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको $72.98 and $108+ ऑनवर्ड्स भी ये कलेक्शन मिल जाएगा, जिसके लिए आपको लॉग ऑन करना है www.shahimaharani.com/royaldiwalisweets। तो आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन ऑर्डर्स जो हैं वो शुरू हो ही चुके हैं, और अगर आपने जल्द से जल्द ये अपने ऑर्डर्स बुक नहीं किए तो हाथ से निकल जाएंगी चीजें। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: देखो कोई चीज रेगुलर बेसिस पे होती है ना तो उसकी कीमत नहीं होती है, पर वो बहुत रेयरली हमें दिखाई देती है ना तो हमें मजा आ जाता है। जस्ट लाइक कि कोई सेलिब्रिटी 10 साल पहले एक साथ दिखा हो और वो मूवी सुपरहिट हो गई हो और अब वो दोबारा से निकल कर आने वाले हैं साथ साथ। सो हम साथ साथ हैं, आजकल दिखाई देना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुरॉप के साथ एंड करीबन 14 ईयर्स के बाद ये कॉम्बिनेशन नजर आने वाला है, पता है कौन सा? अक्षय कुमार एंड आर माधवन, जो पहले हाउसफुल 2 मूवी में एक साथ नजर आए हैं एंड डेफिनेटली इस बार ना साजिद खान एक कॉमेडी मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं एंड उसका नाम क्या होगा अभी बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ इस मूवी में ये लोग वंस अगेन दिखाई देने वाले हैं। तो वो होता है ना वो रिश्तेदार जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं उनकी कदर नहीं होती, जो कभी कभी आते हैं ना अचानक से सरप्राइज दे देते हैं कि पहचानो हम आ गए, तो उनका थोड़ा आदर सत्कार कुछ अलग ही होता है, डोंट यू थिंक सो? चलो चलो चलो बहुत वक्त हो गया यार किसी के घर मेहमान बनकर नहीं गए, कुछ प्लान किया जाए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।